0: इफ वीकेंड वाज अ गाय,
1: वो आ गया, देखो वो आ गया।
0: इफ वीकेंड वाज अ गर्ल, इफ वीकेंड वाज अ फिल्मी डायलॉग,
2: स्वागत नहीं करोगे आप हमारा।
0: एंड इफ वीकेंड वाज एन ऐप,
3: रेडियो मस्ती 24/7 लाइव,
4: रेडियो मस्ती 24/7 लाइव,
5: रेडियो मस्ती 24/7 लाइव,
6: रेडियो मस्ती 24/7 लाइव।
0: How to make best of weekends that travel faster than light. Tune into our Musty Weekends on Radio Musty 24/7 Live, the perfect recipe for you to unwind, keeping body entertainment close to you, anywhere, anytime. Josh.

0: नए दिन की शुरुआत शांति और श्रद्धा के साथ। भक्ति, प्रेरणा और सुकून भरे गीत सुनिए रेडियो मस्ती 24/7 पर। मस्ती पे भक्ति सुबह 6 बजे।
1: The perfect recipe for you to unwind. Musti Weekends only on Radio Musti 24/7 Live.

0: इफ वीकेंड वाज अ गाय,
1: वो आ गया, देखो वो आ गया।
0: इफ वीकेंड वाज अ गर्ल, इफ वीकेंड वाज अ फिल्मी डायलॉग,
2: स्वागत नहीं करोगे आप हमारा।
0: एंड इफ वीकेंड वाज एन ऐप,
3: रेडियो मस्ती 24/7 लाइव,
4: रेडियो मस्ती 24/7 लाइव,
5: रेडियो मस्ती 24/7 लाइव,
6: रेडियो मस्ती 24/7 लाइव।
0: How to make best of weekends that travel faster than light. Tune into our Musty Weekends on Radio Musty 24/7 Live, the perfect recipe for you to unwind, keeping body entertainment close to you, anywhere, anytime.

की शुरुआत हो थोड़ी सी न्यूज के साथ, थोड़ी सी गॉसिप के साथ और बहुत सारी मस्ती के साथ। क्योंकि जब ट्यूसडे आता है ना, तो आती है आरजे अंतरा की बातों की बारिश। Your daily scoop of what's hot, what's viral and what's worth knowing. Served fresh with great music and my unbeatable charm, you see. Tune in to me on Masti Ka Mantra with RJ Antara. Har Tuesday subah 7 baje, sirf Radio Masti.

0: देखो देखो वो आ गया।
1: सिंगापुर, जिसका था आपको इंतजार, जिसके लिए था आपका जिया बेकरार, लौट आया है वो लेकर किस्से और गाने बेशुमार।

0: यादों का कारवा विद समर, याद करेंगे गुजरे जमाने की फिल्में, किस्से और गाने। तो शामिल हो जाइए समर के साथ यादों का कारवा में, सिर्फ रेडियो मस्ती 24/7 लाइव पर।
1: हेलो आदाब, नमस्कार, सिंगापुर, कैसे हैं आप? मैं हूं समर, रेडियो मस्ती 24/7 लाइव पर लेकर हाजिर हूं यादों का कारवां। तो जरा देखें कि आज यादों का कारवां कौन से साल से होकर गुजर रहा है। मैं आपको गाने का जिक्र करके बताता हूं, आप बताइएगा ये कौन से साल की बात कर रहा हूं मैं और कौन सी फिल्म का गाना ये।
2: मेरे,
1: बस इतना ही कहूंगा, ख्वाबों में जो आए आप समझ जाएंगे। मेरे ख्वाबों में जो आए, लता जी की आवाज में गाए इस गाने में शॉर्ट स्कर्ट पहनकर बारिश में भीगते हुए डांस करने की स्टाइल ने काजोल की इमेज को बोल्ड इमेज में तब्दील कर दिया था। और ये प्यारा सा गाना था, आप समझ गए कौन सी फिल्म का, डीडीएलजे बोले तो दिल वाले दुल्हनिया ले जाएंगे। फिल्म शोले के बाद सबसे बड़ी हिट फिल्म है इंडस्ट्री की, इसमें कोई दो राय नहीं है। नूतन की भांजी काजोल ने इस फिल्म में जिस तरह से अभिनय किया अपने आप में काबिले तारीफ है। और इस गाने के साथ एक इंटरेस्टिंग बात यह है कि इस फिल्म से एज अ डायरेक्टर डेब्यू करने वाले आदित्य चोपड़ा की ये फिल्म जबरदस्त हिट हो गई थी और इसके गाने लिखे थे महान गीतकार आनंद बख्शी साहब ने। आदित्य चोपड़ा ने आनंद बख्शी साहब से 24 बार अलग अलग लाइन्स लिखवाई, तब कहीं जाकर यह गाना 25वीं बार में पूरा लिखा गया, फाइनल हुआ। आदित्य चोपड़ा के निर्देशन में बनी फिल्म दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे में शाहरुख खान, काजोल, अमरीश पुरी, फरीदा जलाल, परमीत सेठी और मंदिरा बेदी भी थी। जी हाँ, मंदिरा बेदी, वो जो परमीत सेठी की बहन बनी थी और जिनसे शाहरुख खान की लगभग शादी करवाई दी गई थी। इस फिल्म का म्यूजिक तैयार किया था जतिन ललित ने। बॉक्स ऑफिस पर इस फिल्म ने सारे रिकॉर्ड तोड़कर रख दिए। अगर एक एक करके मैं इस फिल्म के गानों की बात करूं तो तुझे देखा तो ये जाना सनम, लता जी और कुमार सानू की आवाज में गाए इस गाने ने धूम मचा दी थी। इस गाने में शाहरुख खान ने लेदर की जो ब्लैक जैकेट पहनी थी उसे उदय चोपड़ा ने कैलिफोर्निया के बेकर्स फील्ड में हार्ली डेविडसन के शोरूम से $400 में खरीदा था। इसके बाद से ये जो ब्लैक जैकेट की डिमांड एक तरह से मार्केट में आ गई थी, ये ट्रेंड बन गया था। ये गाना जिस सरसों के खेत में शूट किया गया था वो लोकेशन गुड़गांव की थी। उदित नारायण और लता मंगेशकर की आवाज में गाया गाना मेहंदी लगा के रखना शादी के माहौल में बजने वाले फेवरेट सॉन्ग्स में से आज भी नंबर 1, 2 और 3 पर है। और वो हो गया है तुझको तो प्यार सजना, ये भी सीधे दिल को छू जाता है। यशराज कैंप के साथ कई फिल्में करने के बावजूद भी शाहरुख खान इस फिल्म को करने के लिए तैयार नहीं हुए थे। आदित्य चोपड़ा को शाहरुख के साथ 4 बार मीटिंग करनी पड़ी, तब कहीं जाकर शाहरुख इस फिल्म को करने के लिए तैयार हुए थे। इस फिल्म का वो जो गाना है ना, रुक जाओ दिल दीवाने, इसमें शाहरुख को पियानो बजाते हुए दिखाया गया है, जबकि असल जिंदगी में शाहरुख को पियानो बजाने का बिल्कुल भी शौक नहीं है, बल्कि आता ही नहीं है। लेकिन इस गाने के लिए उन्होंने बहुत प्रैक्टिस की और जब आप देखेंगे उन्हें तो ऐसा लगता है कि वाकई वही बजा।

0: 40% off. 40% joy alukas.
1: 40% off. Oh my god. Let's go.
2: Offer aisa ki aap bhi khud ko rok nahi payenge. Joya Lucas laya hai the biggest jewelry sale. Flat 40% off on making charges for gold, diamond, polki and precious jewelry. And 100% value on diamond exchange. Offer valid till 14 June 2026. Visit 412-134 and 320 Serangoon Road. Joya Lucas, the world's favorite jeweler.
3: ये बंधन तो प्यार का बंधन है, आपका और मेरा ये बंधन है। रेडियो मसी 24/7 लाइव के जरिए जहां पर मैं समर कर रहा हूं आपके साथ बातचीत यादों का कारवां लेकर हाजिर हूं एक बार फिर से और आपको गुजरे जमाने की बेहतरीन फिल्में और उनके नगमों से रूबरू करा रहा हूं, उन यादों से वाकिफ करा रहा हूं जो कहीं खो गई हैं आज की भागती दौड़ती जिंदगी में। तो इन फिल्मों के साथ आपको जो यादें आ रही हैं वो हमसे जरूर शेयर करते रहिएगा। ये बंधन तो प्यार का बंधन है, राकेश रोशन के निर्देशन में बनी सुपरहिट फिल्म करण अर्जुन का था ये गाना। इस गाने को गाया था कुमार सानू ने और उनके साथ उदित नारायण और अलका याग्निक ने। मेरे करण अर्जुन आएंगे, ये वही वाली फिल्म थी। संगीत दिया था राजेश रोशन ने और गीतकार थे इंदिवर। पुनर्जन्म पर यूं तो कई फिल्में बनी हैं पर पुनर्जन्म पर आधारित इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर जो सफलता पाई वो अपने आप में कमाल है। इस फिल्म की सबसे बड़ी खूबी ये थी कि इस फिल्म में दो उस जमाने के सुपरस्टार्स काम कर रहे थे एक साथ, आज भी बड़े स्टार हैं वो, सलमान खान और शाहरुख खान की बात कर रहा हूं मैं। सलमान और शाहरुख की एक साथ ये पहली फिल्म थी। अच्छा, पहले इस फिल्म का जो टाइटल था ना वो कायनात रखा गया था और शुरू में सनी देओल और अजय देवगन को लेकर इस फिल्म को बनाने का प्लान किया गया था, पर जब अजय देवगन से बात की गई तो अजय ने मना कर दिया। और सबसे मजे की बात ये कि इस फिल्म में सलमान खान वाले रोल के लिए अजय देवगन को अप्रोच किया गया था। सोचिए कैसे लगते हैं अजय देवगन। खैर, जो होता है अच्छे के लिए होता है, क्योंकि बाद में इन दोनों खान की पॉपुलैरिटी की वजह से ये फिल्म बहुत हिट हुई। कुमार सानू और अलका याग्निक की आवाज में गाया गया गाना जाती हूं मैं जल्दी है क्या, इस गाने को जब म्यूजिक डायरेक्टर राजेश रोशन बना रहे थे तो इसकी धुन से सेटिस्फाई नहीं थे और उन्होंने इसे रिजेक्ट कर दिया था। पर जब राकेश रोशन ने इस ट्यून को सुना तो राकेश को लगा कि यार ये ट्यून बहुत बढ़िया है और उन्होंने राजेश जी को, उनके जो छोटे भाई हैं, इंसिस्ट किया कि भैया इस पर वो गाना बनाओ। और तब जाकर ये गाना रिकॉर्ड हुआ और ये गाना रिलीज हुआ तो बहुत बड़ा सुपरहिट साबित हो गया। मुझे इस गाने में पता क्या याद है, काजोल का मल्टीकलर स्कर्ट, कमाल का था वो। एंड यू वोंट बिलीव कि मार्केट में इस तरह के बहुत सारे स्कर्ट्स आ गए थे उस जमाने में और मैं तो कहता हूँ कि आज भी ये फैशन में हो सकते हैं, मल्टी कलर। ओ लवली, इट वाज लवली। आप यूट्यूब पर देखिएगा इस गाने को, एंजॉय कीजिएगा। लेकिन फिलहाल आप तो मेरे साथ बने रहिए और मैं इस फिल्म की बातें आपसे करता रहूंगा। अच्छा, जैसे इसके हीरो जो थे करण अर्जुन जो होने वाले थे वो सनी पाजी और अजय देवगन होने वाले थे, उसी तरह से इसकी हीरोइंस भी पहले अलग थी। पहले ये रोल ऑफर किया गया था काजोल वाला जो रोल था जूही चावला को और ममता कुलकर्णी वाला रोल ऑफर किया गया था करिश्मा कपूर को। पर भैया वो कहते हैं ना कि जिसके नसीब में सक्सेस होती है उसे ही मिलती है। सक्सेस इनको मिलनी थी, इस कास्ट को मिलनी थी, इन्हें मिली। इस फिल्म में दिखाया गया माँ काली का मंदिर जो है वो पुष्कर में स्थित है, क्योंकि इस फिल्म की ज्यादातर शूटिंग राजस्थान में हुई है। तभी तो अशोक सर्राफ का उड़ा लोग है ना, ठाकुर तू तो गयो, बहुत ही हिट हुआ था। राजेश रोशन को इस फिल्म के लिए बेस्ट म्यूजिक डायरेक्टर का फिल्म फेयर अवार्ड मिला था। चलिए, इतनी सारी बातें इस फिल्म के साथ हो गई, अब कुछ गाने भी सुन लेते हैं, यादों के कारवां को आगे बढ़ाते हैं। आप सुनते रहेगा समर के साथ रेडियो मजी 24/7 लाइव पर यादों का कारवां।

हमको सिर्फ तुमसे प्यार है। मुझे मालूम है मुझे तो आप प्यार करते ही हैं, तभी तो एक से बढ़कर एक प्यारे गाने सुनाने के लिए मैं स्टूडियो में आ जाता हूँ, उन खूबसूरत यादों को ताजा करने जो फिल्मों के साथ चिपक कर चली आती है। चलिए इस वक्त मैं बात करने जा रहा हूँ इसी फिल्म की जिसका अभी मैंने गाना गाया, हिंट दे दिया मैंने आपको, घुंघराले बाल वाले। और क्यूट सी स्माइल से अपनी पहली फिल्म से लड़कियों के दिलों में जगह बनाने वाले और कोई नहीं बल्कि वो थे धर्मपाल जी के दूसरे बेटे बॉबी देओल। और ये जो पहली फिल्म है उनकी बरसात का गाना है, इसी फिल्म से उन्होंने एंट्री की थी इंडस्ट्री में और इस गाने को गाया था कुमार सानू और अलका जी ने और संगीत दिया था नदीम श्रवण ने। राजकुमार संतोषी के निर्देशन में बनी फिल्म बरसात ने बॉक्स ऑफिस पर बड़ा अच्छा कलेक्शन किया और इस फिल्म के लिए ट्विंकल खन्ना को और बॉबी देओल दोनों को बेस्ट डेब्यूटेंट का अवार्ड मिला था। वैसे ये जो फिल्म है राजकुमार संतोषी ने डायरेक्ट की है, लेकिन पहले ओरिजिनली वो धर्मपाल जी की पहली चॉइस नहीं थे, पहले ये फिल्म डायरेक्ट कर रहे थे शेखर कपूर। कुछ सीन्स उन्होंने शूट कर भी लिए थे पर पता नहीं क्यों शेखर संतुष्ट नहीं थे अपने काम से, इंटरेस्ट नहीं आ रहा था उन्हें इस फिल्म में, तो उन्होंने ये काम बीच में छोड़ दिया और ये फिल्म मिली राजकुमार संतोषी को। मैं सोच रहा हूँ कि अगर शेखर कपूर इस फिल्म को बनाते तो ये फिल्म कैसी बनती, किस अंदाज में बनती, क्योंकि शेखर कपूर की हीरोइन के तौर पर उनकी पहली पसंद थी मॉडल लीजा रे और लीजा रे को हिंदी नहीं आती थी जिसकी वजह से इस फिल्म में उन्हें लिया नहीं गया, वरना तो मतलब फिल्म कुछ और बनती। वेल चलिए इस फिल्म के गानों की बात कर ली जाए। इस फिल्म का गाना नहीं ये हो नहीं सकता कि तेरी याद ना आए, ये कुमार सानू ने गाया और काफी दिल को छू देने वाला गाना है। जब आप जुदा होते हैं ना अपने प्यार से तो कुछ ऐसी आवाजें निकलती हैं दिल से। कुमार सानू और अलका याग्निक की आवाज में गाया गया गाना लव तुझे लव मैं करता हूँ ये बड़ा खूबसूरत लगता था। और इस फिल्म का टाइटल 5 बार बदला गया था, आपको मालूम है, छठी बार जाकर फाइनल हुआ। सबसे पहले इसका टाइटल रखा गया था जान, उसके बाद मेरी जान, फिर जीत, फिर सातवां आसमान भी रखा गया, फिर एक और था सातवां जहां, पर फाइनली इसे बरसात नाम से लॉन्च किया गया। इस फिल्म में बॉबी की मां का किरदार निभाने के लिए अनीता राज से भी बात की गई पर अनीता राज ने मना कर दिया था। तो ये तो थी इस फिल्म से जुड़ी कुछ बेहतरीन बातें जो शायद आपको नहीं पता हो, और अगर पता भी हो तो कोई बात नहीं, गानों के साथ एंजॉय कर लीजिए ना यादों का कारवां। मैं हूं समर, रेडियो मसी 24/7 लाइव पर आप अपनी यादें हमसे शेयर करते रहिएगा। स्टे कनेक्टेड।

0: आम ले लो, ताजा मीठा आम ले लो, GGMartOnline.com से आम ले लो।
1: जब घर की याद आए, GGMartOnline.com से अल्फांसो आम मंगाए। ऑर्गेनिक, केमिकल फ्री, स्ट्रेट फ्रॉम देवगढ़, रत्नागिरी एंड मोर। नाउ एट GGMart। ऑर्डर नाउ एट GGMartOnline.com और कॉल 8085 6577।

0: क्या
1: मैं क्यों बेचैन रहता हूँ?
0: क्यों
1: मेरी इस बेकरारी की वजह क्या है बता दूँ क्या
0: क्या

वेलकम बैक जमर के साथ रेडियो मसी 24/7 लाइव पर आप सुन रहे हैं यादों का कारवां। तो आज जब यादों की खिड़की खुली है और वहां से जो यादों की परवाही चल पड़ी है, जो अपने साथ लाई है उस दौर की बेहतरीन फिल्में, उनके नगमे और बहुत सारी यादें जो इन गानों और इन फिल्मों के साथ जुड़ी हुई हैं, वो हम एक दूसरे से शेयर कर रहे हैं। तो इस वक्त मैं आपसे बात करने वाला हूँ राम गोपाल वर्मा के डायरेक्शन में बनी एक फिल्म का। आमिर खान थे इसमें टपोरी लुक में। ए पंखा वंखा चलाना। सर एसी इज ऑन। अरे तो उसको इधर घुमाना, गर्मी लगती है यार, समझ गए आप। मैं बात कर रहा हूँ उस फिल्म की जिसमें उर्मिला मातोंडकर का पैशनेट डांसर का किरदार है और जैकी श्रॉफ के मस्त अंदाज के साथ ए आर रहमान का सुपर डुपर हिट म्यूजिक है। यू गॉट इट राइट, रंगीला की मैं बात कर रहा हूँ। इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर धमाल मचा कर रख दिया था। मुझे याद है कि जब ये फिल्म आई थी तो ये फिल्म थिएटर में ऐसे चला करती थी जैसे कोई यूथ फेस्टिवल हो। यंगस्टर्स यंगस्टर्स यूथ यूथ, और इतना शोर शराबा होता था शुरू के आधे घंटे में कि आधे डायलॉग तो सुनाई नहीं देते थे। वो भी एक दौर था। फिल्म बहुत बड़ी हिट हुई और उर्मिला के लिए तो ये बहुत बड़ी हिट और एस्टेब्लिश कर देने वाली फिल्म साबित हुई। आशा भोसले जी की आवाज में गाया गया गाना तन्हा तन्हा यहाँ पे जीना बहुत ही क्लासी लगता है, और जब ये गाना मार्केट में आया था तब लोगों को विश्वास ही नहीं हुआ था कि इस गाने को आशा जी ने गाया है, क्योंकि जिस तरह से ये गाना गाया गया उससे ये लगता है कि ये गाना किसी एकदम यंग एज की सिंगर ने गाया होगा। इस गाने के लिए आशा भोसले को स्पेशल जूरी बेस्ट फीमेल सिंगर का अवार्ड दिया गया। इस फिल्म ने उर्मिला मातोंडकर के अभिनय को एक अलग पहचान दी, तो राम गोपाल वर्मा की भी इमेज को टॉप डायरेक्टर्स में शामिल करा दिया था। राम गोपाल वर्मा की पहली पसंद वैसे इस फिल्म के लिए थी श्रीदेवी, पर श्रीदेवी ने मना कर दिया, तो रामू ने रवीना टंडन को अप्रोच करने की कोशिश की पर रवीना ने भी मना कर दिया। तब उर्मिला को लेकर यह फिल्म बनाई गई और इस फिल्म के तमाम गाने बड़े क्लासी हैं। महबूब साहब ने गाने लिखे थे, हरिहरन और स्वर्णलता की आवाज में गाया गया गाना हाय रामा ये क्या हुआ क्यों ऐसे हमें सताने लगे, बहुत ही सेंसुअस गाना है। और वहीं उदित नारायण की आवाज में गाया गया गाना क्या करें क्या ना करें ये कैसी मुश्किल है, एकदम मस्त बिंदास गाना है। अच्छा, जैकी श्रॉफ की भी जगह पहले सलमान खान लिए जाने वाले थे लेकिन उन्होंने भी मना कर दिया। वहीं आमिर खान के रोल के लिए पहले अनिल कपूर को अप्रोच किया गया था, वहां पर भी बात बनी नहीं। अच्छा, इस फिल्म का एक गाना है ना मंगता है क्या, श्वेता शेट्टी और यार रहमान दोनों ने मिलकर गाया है और कमाल का गाया, और उसमें डांस बड़ा जबरदस्त है। गाने एक से बढ़कर एक थे। टपोरी आमिर खान जब वो गाना गाते हैं यारो सुन लो जरा अपना ये कहना, उदित नारायण और चित्रा की आवाज में गाया गया ये गाना बिंदास था, बड़ा हिट हुआ। मनीष मल्होत्रा ने उर्मिला के लिए कपड़े डिजाइन किए और ए आर रहमान को इस फिल्म के लिए बेस्ट म्यूजिक डायरेक्टर का फिल्म फेयर अवार्ड मिला था, और साथ ही उन्हें आर डी बर्मन फिल्म फेयर फॉर द न्यू म्यूजिक टैलेंट अवार्ड भी दिया गया था। और जीता जैकी श्रॉफ ने बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर का फिल्म फेयर अवार्ड इसी फिल्म के लिए। कहते हैं कि मिस्टर परफेक्शनिस्ट आमिर खान ने टपोरी का लुक अपने अंदर उतारने के लिए, वो जो कैरेक्टर था उसके अंदर घुसने के लिए कई दिन टपोरियों के साथ गुजारे थे। भाई उनका तो कहने क्या, परफेक्शनिस्ट हैं, कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन हम क्या करें, हम तो इन गानों को सुना सकते हैं आपको और इनसे जुड़ी यादों को आप हमसे शेयर कर सकते हैं। करते रहिएगा यादों का कारवां है ये, मैं हूं समर रेडियो मसी 24/7 लाइव पर।

0: Tushahi Maharani for the special treat.
1: Thank you to Shahi Maharani for making this Mother's Day more special.
2: Thank you, Shahi Maharani, for comforting and mouth-watering flavors.
1: Thank you.
3: Thank you.
2: Thank you.
0: Thank you. We love you.
4: For 25 years, Shahi Maharani has brought royal North Indian flavors to Raffle City. Celebrate with 6 Shahi Signature Wet and Non-Veg dishes for just $25 plus. Served hot on your table. Now on till 30th June with minimum spend of $100 plus per table. 25 years of royal flavors. Only at Shahi Maharani North Indian Restaurant. Book now at shahimaharani.com or call 6235-8840. Terms and conditions apply. रेडियो मस्ती 24/7 लाइव पर मैं हूँ अंतरा आपके साथ,
5: मैं आरजे पर मस्ती मॉर्निंग शो पर आपके साथ।
6: लीजिए, समर आ गया है लेकर यादों का कारवां।
7: आपने इनकी आवाज तो सुनी है, अब क्या आप अपनी आवाज अपने ही शो के जरिए हमारे लाखों लिसनर्स तक पहुँचाना चाहेंगे? स्टेज फियर को भगाना हो या पैशन को आगे बढ़ाना हो, इट्स इम्पोर्टेंट टू स्टार्ट विद द राइट ट्रेनिंग। The RJ Academy at Masti Media Network is now open for you. That too with a hybrid model for your convenience. 12 hours training per level. Flexible individual focus syllabus offered for 14 years old and above. Selected trained voices to get an opportunity to host live on Radio Masti 24/7. Email a brief intro to info@radiomasti.com.sg requesting for an application form.
8: Good morning!
6: आंखियां मिलाऊं कभी आंखियां चुराऊं, क्या तूने किया जादू। वेलकम बैक। मैंने कोई अभी तक जादू नहीं किया और कर भी नहीं सकता ना, आंखों से तो कर ही नहीं सकता हूं क्योंकि मैं रेडियो पर हूं, दिखाई नहीं देता हूं, लेकिन मन की आंखों से देखेंगे तो मैं भी दिखाई दूंगा। मेरा नाम है समर, रेडियो में 24/7 लाइव पर लेकर हाजिर हूं यादों का कारवां। तो अब आप समझ गए होंगे कि अगर मैंने ये गाना गाया है, गुनगुनाया है, तो इसी से रिलेटेड मैं बात करने वाला हूं। माधुरी दीक्षित, संजय कपूर, परेश रावल, मुकेश खन्ना, दिलीप दाहिल, हिमानी शिवपुरी जैसे कलाकारों से सजी थी ये फिल्म जिसका नाम था राजा। इस फिल्म का डायरेक्शन किया था इंदर कुमार ने और ये फिल्म संजय कपूर की पहली बड़ी हिट फिल्म थी। अब भाई उनकी वजह से हिट नहीं थी ये फिल्म, तो थी माधुरी की वजह से हिट। लेकिन होता है ना, ऐसा होता है, कई बार होता है कि कुछ लोगों के नसीब में हिट्स होती हैं, बाद में वो सक्सेस उनके नाम हो या ना हो। भाई जैसे ग्रेसी सिंह है, कितनी बड़ी बड़ी फिल्मों में उन्होंने काम किया, लगान। लेकिन लगान किसके नाम से जानी जाती है? आमिर खान के नाम से। मुन्ना भाई MBBS किसके नाम से जानी जाती है? संजय दत्त। तो यूं संजय कपूर को भी ये हिट मिल गई माधुरी दीक्षित की वजह से। वैसे इस फिल्म में परेश रावल का बड़ा कमाल का काम था और ये जो गाना था ना, आंखियां मिलाऊं कभी आंखियां चुराऊं, इस गाने को उदित नारायण और अलका याग्निक ने गाया था। और जिस तरह से माधुरी ने ब्लैक जीन्स और ब्लैक टी शर्ट पहनकर 4x4 जीप पर डांस किया था, वो कमाल था। इंदर कुमार की पहली चॉइस परेश रावल वाले रोल के लिए नाना पाटेकर थे और उन्होंने उन्हें साइन भी कर लिया था, शूटिंग करना शुरू भी कर दिया था। पर नाना पाटेकर जब डायरेक्शन में दखलंदाजी करने लगे तो इंदर कुमार ने उन्हें फिल्म से बाहर निकाल दिया। शायद आपको जानकर हैरानी होगी कि परेश रावल वाला किरदार शाहरुख खान निभाना चाहते थे। बहुत कमाल का था ये रोल। मैंने कहा ना, अगर आप ये फिल्म देखेंगे तो ये रोल हमेशा याद रखेंगे, परेश रावल वाला। इसी फिल्म का एक और गाना था, किसी दिन बनूंगी मैं राजा की रानी। उदित नारायण और अलका याग्निक ने इसे गाया और सरोज खान ने इसे कोरियोग्राफ किया। पर डायरेक्टर इंदर कुमार को सरोज खान की कोरियोग्राफी पसंद नहीं आई और इसलिए उन्होंने अहमद खान को, जो उन्हीं के शिष्य हैं, उनके स्टूडेंट हैं, उन्हें बाकी के गानों के लिए कोरियोग्राफी के लिए अपॉइंट कर लिया था। नजरें मिली दिल धड़का जो टाइटल ट्रैक है, लव यू राजा, वो भी बड़ा मस्त है। इंदर कुमार ने पहले इस फिल्म को तब्बू के साथ करने का प्लान किया था पर बाद में उन्होंने मूड चेंज किया और माधुरी को लेकर ये फिल्म बनाई। जबरदस्त हिट फिल्म थी। माधुरी को मिला बेस्ट एक्ट्रेस का फिल्म फेयर अवार्ड इसी फिल्म के लिए। तो फिलहाल इस फिल्म से जुड़ी यादें आप ताजा कीजिएगा, मैंने इस फिल्म से जुड़ी बातें आपसे शेयर कर ली हैं। रेडियो मस्ती 24/7 लाइव पर यादों का कारवां जारी है, सुनते रहिए।

0: देखो देखो वो आ गया।
1: सिंगापुर, जिसका था आपको इंतजार, जिसके लिए था आपका जिया बेकरार, लौट आया है वो लेकर किस्से और गाने बेशुमार।

0: यादों का कारवा विद समर, याद करेंगे गुजरे जमाने की फिल्में, किस्से और गाने, तो शामिल हो जाइए समर के साथ यादों का कारवा में, सिर्फ रेडियो मस्ती 24/7 लाइव पर।
1: आया हूँ यारो दिल अपना देखे। नमस्कार, मेरा नाम है समर, रेडियो मस्ती 24/7 लाइव पर एक बार फिर से हाजिर हूँ लेकर यादों का कारवां। मैं अपना दिल कहीं देकर नहीं आया हूँ, मेरा दिल तो आपके पास है। बस मैं तो सिर्फ इस गाने का और इस फिल्म का जिक्र करने वाला हूँ। कौन सा था ये गाना, कौन सी थी ये फिल्म, आप जरा गैस कीजिए। मैं कुछ और हिंट देता हूँ आपको। अनु मलिक के संगीत और मजरूह सुल्तानपुरी के लिखे हुए बोलों से सजा उदित नारायण की आवाज में गाया गया था ये गाना। ये आज भी महफिल में रंग जमा देता है। इस गाने में आमिर खान है और एक रॉक स्टार वाले लुक में। बताइए कौन सी फिल्म है ये। जिन्होंने गैस कर लिया है उनका जवाब सही है या नहीं ये जान लीजिए। मंसूर खान के डायरेक्शन में बनी थी ये फिल्म, अकेले हम अकेले तुम, उसी फिल्म का ही गाना। इस फिल्म में आमिर खान को लेने से पहले शाहरुख खान को अप्रोच किया गया था, पर शाहरुख खान ने जब लव स्टोरी सुनी तो कहा कि यार ये फिल्म हद से ज्यादा इमोशनल फिल्म है और मैं एक रोमांटिक हीरो हूँ तो मेरे ऊपर ये रोल सूट नहीं करेगा। इस फिल्म का गाना राजा को रानी से प्यार हो गया उदित नारायण और अलका याग्निक की आवाज में गाया गया था। और इस फिल्म में मनीषा कोइराला वाले किरदार के लिए पहले माधुरी से बात की गई थी, पर माधुरी के पास डेट्स की प्रॉब्लम होने की वजह से मनीषा कोइराला को साइन किया गया। यह फिल्म बॉलीवुड की फिल्म क्रेमर वर्सेस क्रेमर का रीमेक थी। द थीम ऑफ ट्रैक राजा को रानी से प्यार हो गया इज अ कॉपी फ्रॉम हॉलीवुड क्लासिक ट्रैक गॉडफादर। इस गाने के बोल को लेकर मजरूह सुल्तानपुरी साहब और अनु मलिक में थोड़ी बहस हो गई थी, गर्मा गर्मी हो गई थी। मजरूह साहब इस गाने के बोल से खुश नहीं थे। वहीं अनु मलिक और कुमार सानू की आवाज में गाया गया गाना दिल मेरा चुराया क्यों भी ये सुनने पर अच्छा लगता है। फिलहाल आप कौन सा सुनेंगे बताइए, आपको कौन सा अच्छा लगता है।
2: चलिए मैं थोड़ा सा शफलिंग कर लेता हूँ, अक्कड़ बक्कड़ कर लेता हूँ और
1: ये वाला गाना ये सुनते हैं है? और इस दौर के कुछ और गानों के साथ अपनी यादें ताजा कीजिए और मुझे अपनी यादों से अवगत कराते रहिए। कहाँ कराएंगे, हमारे फेसबुक पेज पर आकर। मैं हूँ समर, रेडियो मस्ती 24/7 लाइव पर। बस मैं यूं गया और यूं आया। अगली बार कौन सी फिल्म का जिक्र करने वाला हूँ बताऊंगा। जिगर थाम कर बैठे रहिएगा।

यादों का कारवां गुजर रहा है 1996 के ईयर से, तब की फिल्में, उनके गाने और बहुत सारी यादों के साथ इस सफर को बढ़ा रहा है समर रेडियो मसी 24/7 लाइव पर। बाहों के दरमियां मजरू सुल्तानपुरी के बोल और जतिन ललित के संगीत से सजा है गाना। हरिहरन और अलका याग्निक ने इसे गाया और यही वो गाना है जिसकी फिल्म का हम जिक्र करने वाले हैं, खामोशी द म्यूजिकल। उसी फिल्म से लिया गया गाना जिसे डायरेक्ट किया था संजय लीला भंसाली ने। क्या आपको बताया कि संजय लीला भंसाली ने इस फिल्म से एज ए डायरेक्टर डेब्यू किया था फिल्म इंडस्ट्री में, लेकिन शायद ठीक है कह सकते हैं इसी फिल्म से। हालांकि 1942 अ लव स्टोरी में एक गाना वो कर चुके थे डायरेक्ट, कुछ ना कहो, लेकिन पहली बार पूरी फिल्म तो यही डायरेक्ट की थी उन्होंने। संजय लीला भंसाली ने सोच रखा था कि जब भी वो डायरेक्टर के तौर पर डेब्यू करेंगे तो माधुरी दीक्षित के साथ काम करेंगे, पर जब माधुरी से बात की गई तो माधुरी ने मना कर दिया, इसलिए मनीषा कोइराला को लेकर ये फिल्म बनाई गई। इससे भी ज्यादा इंटरेस्टिंग बात यह है कि संजय करीना कपूर को लीड रोल के लिए लेना चाहते थे, पर उस वक्त तक करीना ने एक्टिंग फील्ड में कदम नहीं रखा था, इसलिए करीना ने भी मना कर दिया। चलिए इस फिल्म के गानों की बात कर लेते हैं। कविता कृष्णमूर्ति और कुमार सानू की आवाज में गाया गया गाना आज मैं ऊपर आसमां नीचे, आज भी बहुत हिट है गाना। जब भी आप ओवर एक्साइटेड होते हैं, थ्रिल्ड होते हैं, तो आप अपने आप ही गाना गुनगुनाने लग जाते हैं। इस गाने के लिए कविता कृष्णमूर्ति को बेस्ट फीमेल का स्पेशल फिल्म फेयर अवार्ड मिला था। इस फिल्म में सलमान खान, हेलेन, नाना पाटेकर और सीमा बिस्वास के साथ मनीषा कोइराला ने एक्ट किया था। ये पहली और शायद आखिरी फिल्म है जिसमें नाना पाटेकर और हेलेन एक साथ काम कर रहे थे। नाना पाटेकर, सलमान और मनीषा कोइराला की भी ये पहली मूवी थी, तो बहुत सारी चीजें पहली बार हुई थी इस फिल्म के साथ। आपकी जिंदगी में इस फिल्म के साथ कौन से सेंटीमेंट्स, कौन सी घटनाएं, कौन से इवेंट्स जुड़े हैं हमें जरूर बताइएगा रेडियो मसी 24/7 लाइव के हमारे फेसबुक पेज पर आकर। फिलहाल इन गानों के साथ, खामोशी द म्यूजिकल के और उस दौर के गानों के साथ इस सफर को आगे बढ़ाते हैं। आप सुनते रहेगा समर के साथ सिंगापुर का एकमात्र हिंदी रेडियो, रेडियो मसी 24/7 लाइव।

नमस्कार, एक बार फिर से आपका स्वागत है। अभी हम कौन सी गलियां छोड़कर आए हैं हमें पता नहीं, लेकिन हम सिंगापुर में है रेडियो मसी 24/7 लाइव के जरिए बातें कर रहे हैं। यादों का कारवां है ये। वेल, फिलहाल जब मैंने ये गाना गुनगुनाया है तो इसी फिल्म की मैं बात करने वाला हूँ। ये फिल्म माचिस का गाना, छोड़ाए हम वो गलियां। हरिहरन, सुरेश वाडकर, के और विनोद सहगल की आवाज में गाए इस गाने ने धूम मचा दी थी। और आज भी ये गाना बहुत सारी यादों को एक तरह से पोटली में बांध कर ले आता है। उस दौर की वो तमाम यादें हैं जब ये फिल्म देखी गई थी, सामने आके खड़ी हो जाती है, बहुत सारी बातें करती है। और भी इस फिल्म के तमाम गाने बहुत ही कमाल के थे। गुलजार साहब ने ये फिल्म बनाई थी, गुलजार के लिखे हुए बोल थे और विशाल भारद्वाज का शानदार संगीत था माचिस में। और इस गाने से ही इंडस्ट्री के फेमस सिंगर के ने अपनी पारी की शुरुआत की थी एज अ प्लेबैक सिंगर। हाँ, तो मैं बात कर रहा था कि कैसे कोई इंसान किसी को देखकर कुछ और करने की चाहत रखता है। इसका बेस्ट एग्जांपल है गुलजार साहब। महान गीतकार, लेखक और डायरेक्टर गुलजार साहब को देखकर विशाल भारद्वाज, जो उन्हें असिस्ट किया करते थे, इस फिल्म में संगीत देने के साथ साथ उनमें एज अ डायरेक्टर खुद को प्रूव करने की ख्वाहिश जागी। और इस फिल्म के बाद ही विशाल ने फिल्म डायरेक्टर के तौर पर डेब्यू किया और एक से बढ़कर एक हिट फिल्म्स मकबूल, हैदर, ओमकारा जैसी फिल्में डायरेक्ट की। इस फिल्म में चंद्रचूड सिंह, जिमी शेरगिल, तब्बू और ओम पुरी ने मेन कैरेक्टर्स निभाए थे और साथ में सुनील सिन्हा भी थे। उन्हें कैसे भूल सकते हैं, जो दाढ़ी वाले थे ना, सुनील सिन्हा। गुलजार साहब ने चंद्रचूड सिंह वाले रोल के लिए पहले जैकी श्रॉफ से बात की थी, पर जैकी ने मना कर दिया क्योंकि जैकी को लग रहा था कि उनको प्राइज कम दी जा रही है, उनका मेहनताना जो है वो काफी कम है। दूसरा, वो ग्रैंड मूवी की शूटिंग में बिजी थे उस वक्त। ग्रैंड नाम से एक फिल्म आई थी, पर मुझे लगता है कि उस ग्रैंड को तो ग्रैंड लग गया, इस माचिस ने जला दिया उसको। बहुत ही कमाल की थी ये फिल्म। वैसे आपको क्या लगता है कि जैकी उतनी दमदार परफॉर्मेंस दे पाते जितनी चंद्रचूड सिंह ने दी थी? मुझे लगता है उससे ज्यादा बेहतर कर पाते। चलिए अब इस फिल्म के बाकी के गानों की भी बात कर ली जाए। पानी पानी रे, लता जी की आवाज में गाया गया गाना, उफ कमाल का था। और वो गाना जिसका मैं जिक्र करने वाला था, चप्पा चप्पा चरखा चले, हरिहरन सुरेश वाडकर ने जिस अंदाज में ये गाना गाया है, यादें ही उनकी जो आ रही है इस गाने में। बहुत ही कमाल का गाना है, बहुत कमाल का गाना। बड़ी नॉस्टैल्जिक फीलिंग है इस गाने में, जब भी गौर से सुनेंगे तो आंखें डबडबा आती हैं। कहां छोड़ा है वो गलियां, कहां रह गए वो चरखे, पता नहीं। लेकिन सिंगापुर में अभी हम रेडियो मसी 24/7 लाइव के जरिए इस खूबसूरत प्रोग्राम में हम एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। मेरा नाम है समर। रेडियो मसी 24/7 लाइव पर आपकी यादों को मैं सुनना चाहता हूं, देखना चाहता हूं, पढ़ना चाहता हूं। हमारे फेसबुक पेज पर आकर जरूर लिखिएगा। माचिस की बात कर रहा हूं मैं। इन गानों के साथ इस सफर को आगे बढ़ा लेते हैं। स्टे कनेक्टेड।

भैया हम है सीधे साधे समर, समर नाम हमारा है यही, आते हैं हम रेडियो मस्ती 24/7 लाइव पर लेकर यादों का कारवां। वेलकम है एक बार फिर से आपका स्वागत। तू कौन है, तेरा नाम क्या है? कुमार सानू और साधना सगरम की आवाज में गाना था ना हम है सीधे साधे, अक्षय अक्षय खिलाड़ियों का खिलाड़ी फिल्म से, जिसे अनु मलिक ने कंपोज किया था और ये गाना था उमेश मेहरा के डायरेक्शन में बनी फिल्म जिसका नाम अभी मैंने लिया खिलाड़ियों का खिलाड़ी से। ये मूवी खिलाड़ी वर्ल्ड सीरीज की फोर्थ फिल्म थी। अक्षय कुमार, रेखा, रवीना टंडन ने इसमें कमाल की एक्टिंग की थी और खास तौर से रेखा और अक्षय कुमार का एक तो जबरदस्त गाना है ना, उसकी भी बात करेंगे। इस मूवी की शूटिंग के दौरान अक्षय और रेखा के बीच रोमांस शुरू हो गया था ऐसा कहा जाता है। मैं बता रहा हूँ जिस गाने का जिक्र मैं करने वाला हूँ। एक बार तो ऐसा लगने लगा था कि अक्षय और रेखा शादी कर लेंगे। इस फिल्म के लिए रेखा को बेस्ट सपोर्टिंग एक्ट्रेस का फिल्म फेयर अवार्ड भी मिला था। इस मूवी में रेखा और अक्षय के बीच फिल्माया गया गाना जिसका मैं जिक्र कर रहा था, मड सीन था उसमें, दोनों कीचड़ में सने हुए। कीचड़ मतलब मिट्टी का कीचड़ है, मड है, और इस फिल्म का वो सबसे हॉट सीन कहलाता है। इस स्टीमी गाने को देखकर डिंपल कपाड़िया ने बड़ी खुशी जाहिर की थी क्योंकि पहले रेखा वाला रोल डिंपल कपाड़िया को ऑफर किया गया था और बाद में कुछ सालों में डिंपल अक्षय की सासू मां बन गई। अक्षय की वाइफ ट्विंकल खन्ना डिंपल कपाड़िया की तो बेटी है। फिल्म में सोनू निगम की आवाज में गाया गया गाना माँ शेरावाली बहुत हिट हुआ और आज भी नवरात्रि के दिनों में ये गाना हर पंडाल में बजता है। अभिजीत और कविता कृष्णमूर्ति की आवाज में गाया गया गाना इतना मुझे पता है भी काफी अच्छा गाना था। मैंने उस गाने का जिक्र तो किया लेकिन उसके बोल आपको बताया नहीं। इन द नाइट नो कंट्रोल क्या करूं कुछ तो बोल, सुमित्रा अय्यर की आवाज में गाना था, बड़ा एसेंशियल गाना। चलिए आपको कौन सा सुनना है मैं सुनवाऊंगा, लेकिन उससे पहले एक और बात बता दूं, इस फिल्म में पहली बार उस जमाने के WWF के रेसलर्स दिखाए गए थे, स्पेशली अंडरटेकर। आप कौन सा वाला गाना सुनना चाहेंगे इस फिल्म का, बताइए बताइए, मुझे फिर से अक्कड़ बक्कड़ करना पड़ेगा। अक्कड़ बक्कड़ बम्बे वो ये वाला गाना आपको सुना दो भाई, कंप्यूटर भाई सुना दो, सुनते रहेगा रेडियो मस्ती 24/7 लाइव पर यादों का कारवां समर के साथ।

0: अच्छा सुनो जरा, ग्रोसरी ना खत्म हो रही है तो 1 kg आटा,
1: हाँ जी जी,
0: आधा kg मसूर दाल,
1: जी जी,
0: काजू किशमिश, ओ हाँ, अरे वो नमकीन भी खत्म हो रहे हैं,
1: जी जी,
0: आर यू इवन लिसनिंग या ऐसे ही जी जी किए जा रहे हो?
1: अरे डार्लिंग, व्हाई टू फियर व्हेन जीजी मार्ट इज देयर?
0: क्या
1: जीजी मार्ट, योर पर्सनल ग्रोसर, जस्ट लॉग ऑन टू ggmartonline.com, ग्रोसरी ऐड टू कार्ट करो, चेकआउट करो और ग्रोसरी एट योर डोरस्टेप।
0: वाह जी, क्या बात जी,
1: ऑर्डर टुडे फ्रॉम जीजी मार्ट, योर पर्सनल ग्रोसर। वेलकम बैक, मैं हूँ समर रेडियो मसी 24/7 लाइव पर। अब एक आपसे ऐसा सवाल करने वाला हूँ जो माइंड मत कीजिएगा, लेकिन अब आप सब बड़े हैं, बच्चे अगर मुझे सुन रहे हैं तो थोड़ा सा अवॉइड कीजिएगा इस बात को सुनने से। नहीं सुन सकते, अच्छा सॉरी, आप सिंगापुर में, मैं भूल गया था। बॉलीवुड इंडस्ट्री का सबसे लंबा किस सीन किसके नाम है आपको पता है? मैं कोई एग्जाम नहीं ले रहा हूँ, मैं आपका बस जानना चाहता हूँ। मैंने सोचा कि आपको बता ही दूं, अब मन में आया तो एक सवाल पूछ लिया, क्योंकि मैं अब जिस फिल्म का जिक्र करने वाला हूँ ना, वो यही फिल्म है, परदेसी परदेसी जाना नहीं वाली। अलका याग्निक, उदित नारायण और सपना अवस्थी की आवाज में गाया गया ये गाना था फिल्म राजा हिंदुस्तानी का। धर्मेश दर्शन के डायरेक्शन में बनी थी फिल्म राजा हिंदुस्तानी। इसमें आमिर खान थे, करिश्मा कपूर थी, सुरेश ओबेरॉय और जॉनी लीवर थे, साथ ही कुणाल खेमू ने भी काम किया था। और जॉनी लीवर को कैसे भूल सकते हैं। और इस फिल्म में आमिर खान और करिश्मा कपूर के बीच फिल्म इंडस्ट्री का सबसे लंबा किस सीन फिल्माया गया था। नदीम श्रवण का संगीत, समीर के लिखे हुए गानों से सजी ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर जबरदस्त हिट हो गई थी। अलका याग्निक और कुमार सानू की आवाज में गाया गया गाना पूछो जरा पूछो, और वो कितना प्यारा तुझे रब ने बनाया, अलका और उदित नारायण की आवाज में गाया गया गाना, एक से बढ़कर एक गाने थे इस फिल्म के। ये फिल्म थी जब जब फूल खिले का रीमेक। वहीं कितना प्यारा तुझे रब ने बनाया, दिस सॉन्ग वॉज सैंपल्ड सॉन्ग फ्रॉम द सॉन्ग किन्ना सोना फ्रॉम द एल्बम मैजिकल टच, संग बाय ओरिजिनली संग बाय नुसरत फतेह अली खान साहब। आमिर खान पर हर सीन को परफेक्शन के साथ देने की धुन सवार रहती है, इसको तो हर कोई जानता है। इसलिए इस फिल्म के एक सीन में उन्हें ड्रंक दिखना था, और इस सीन में परफेक्शन लाने के लिए आमिर खान ने एक पूरी बोतल वोडका पी ली थी। और सबसे मजेदार बात यह कि लगातार 8 बार बेस्ट एक्टर के लिए नॉमिनेट होने पर भी उन्हें कोई अवार्ड नहीं मिला था, पर इस फिल्म के लिए आमिर खान को बेस्ट एक्टर का फिल्म फेयर अवार्ड मिला। सिर्फ आमिर खान को ही नहीं बल्कि करिश्मा कपूर को भी बेस्ट एक्ट्रेस का फिल्म फेयर अवार्ड मिला इस फिल्म के लिए, और नदीम श्रवण को बेस्ट म्यूजिक डायरेक्टर का अवार्ड। तो फिलहाल इस फिल्म के बेहतरीन गानों के साथ आपसे लूंगा अलविदा, कुछ और बेहतरीन किस्से और कहानियां लेकर एंड ऑफ कोर्स गाने लेकर लौटूंगा बहुत जल्द। आप सुन रहेगा रेडियो मसी 24/7 लाइव। जाने से पहले बस इतना ही कहूंगा जो हमेशा कहता हूँ, अपना ख्याल रखिएगा, अपने आसपास के लोगों का और चीजों का ख्याल रखिएगा। बहुत जल्द मिलेंगे, बाय बाय, नमस्कार।

0: इस वीकेंड वॉज अ गाय,
1: वो आ गया, देखो वो आ गया।
0: इस वीकेंड वॉज अ गर्ल, इस वीकेंड वॉज अ फिल्मी डायलॉग,
2: स्वागत नहीं करोगे आप हमारा।
0: एंड इफ वीकेंड वॉज एन ऐप,
3: रेडियो मस्ती 24/7 लाइव,
4: रेडियो मस्ती 24/7 लाइव,
5: रेडियो मस्ती 24/7 लाइव,
6: रेडियो मस्ती 24/7 लाइव।
0: How to make best of weekends that travel faster than light. Tune into our Musty Weekends on Radio Musty 24/7 Live, the perfect recipe for you to unwind, keeping body entertainment close to you, anywhere, anytime. Josh.

0: ये रात तो अपनी है पर एक ख्याल किसका है। ये रात हमें इतना प्यार क्यों करती है।
1: मुझे चांद पे ले चलो।
0: सबको सुलाकर हमसे अकेले में बात करती है। बनके रात के हम सफर हर रोज 11 बजे ट्यून इन टू
1: रात अकेली है।
2: जोश में रहो।
3: It's the best of Bollywood playing on Radio Masti 24/7 live. Have a masti bhara weekend.

एक देहाती सर पे गुड़ की भेली बांधे लंबे चौड़े एक मैदान से गुजर रहा था। गुड़ की खुशबू सुन के भिन भिन करती एक छतरी सर पे मंडलाती थी। धूप चढ़ी और सूरज की गर्मी पहुंची तो गुड़ की भेली बहने लगी। मासूम देहाती हैरान था, माथे से मीठे मीठे कतरे गिरते थे और वो जीभ से चाट रहा था। मैंने देहाती, मेरे सर पे ये टैगोर की कविता भेली किसने रख दी।

सामने चूल्हा जल रहा है, धुआं आंखों में लग रहा है, जलन भी है आनंद भी। बस आते ही होंगे, जल्दी से संध्या पूजा हो जाए। जानती है वो क्या कहेंगे।

0: इफ वीकेंड वाज अ गाय,
1: वो आ गया, देखो वो आ गया।
0: इफ वीकेंड वाज अ गर्ल, इफ वीकेंड वाज अ फिल्मी डायलॉग,
2: स्वागत नहीं करोगे आप हमारा।
0: एंड इफ वीकेंड वाज एन ऐप,
3: रेडियो मस्ती 24/7 लाइव,
4: रेडियो मस्ती 24/7 लाइव,
5: रेडियो मस्ती 24/7 लाइव,
6: रेडियो मस्ती 24/7 लाइव।
0: How to make best of weekends that travel faster than light. Tune into our Musty Weekends on Radio Musty 24/7 Live, the perfect recipe for you to unwind, keeping body entertainment close to you, anywhere, anytime. Josh

भूख लगी जोरों की भूख लगी। मुर्गे की बांग हमें कोयल की भूख लगी।

0: अच्छा सुनो जरा, ग्रोसरी ना खत्म हो रही है, तो 1 kg आटा,
1: हाँ जी जी,
0: आधा kg मसूर दाल,
1: जी जी,
0: काजू किशमिश, ओ हाँ, अरे वो नमकीन भी खत्म हो रहे हैं,
1: जी जी,
0: आर यू इवन लिसनिंग, या ऐसे ही जी जी किए जा रहे हो?
1: अरे डार्लिंग, व्हाई टू फियर व्हेन जीजी मार्ट इज देयर?
0: क्या
1: जी जी मार्ट, योर पर्सनल ग्रोसर, जस्ट लॉग ऑन टू ggmartonline.com, ग्रोसरी ऐड टू कार्ट करो, चेकआउट करो और ग्रोसरी एट योर डोरस्टेप।
0: वाजी क्या बात जी,
1: ऑर्डर टुडे फ्रॉम जीजी मार्ट, योर पर्सनल ग्रोसर।
2: द परफेक्ट रेसिपी फॉर यू टू अनवाइंड, मस्ती वीकेंड्स ओनली ऑन रेडियो मस्ती 24/7 लाइव।

0: इफ वीकेंड वाज अ गाय,
1: वो आ गया, देखो वो आ गया।
0: इफ वीकेंड वाज अ गर्ल,
2: आज फिर तुम पे।
0: इफ वीकेंड वाज अ फिल्मी डायलॉग,
3: स्वागत नहीं करोगे आप हमारा।
0: एंड इफ वीकेंड वाज एन ऐप,
4: रेडियो मस्ती 24/7 लाइव,
5: रेडियो मस्ती 24/7 लाइव,
6: रेडियो मस्ती 24/7 लाइव,
7: रेडियो मस्ती 24/7 लाइव।
0: How to make best of weekends that travel faster than light. Tune into our Musty Weekends on Radio Musty 24/7 Live, the perfect recipe for you to unwind, keeping body entertainment close to you, anywhere, anytime. Josh.

0: रेडियो मस्ती 24/7 लाइव पर मैं हूँ अंतरा आपके साथ।
1: मैं आरजे अनु पर मस्ती मॉर्निंग शो पर आपके साथ।
2: लीजिए समर आ गया है लेकर यादों का कारवां।
0: आपने इनकी आवाज तो सुनी है, अब क्या आप अपनी आवाज अपने ही शो के जरिए हमारे लाखों लिसनर्स तक पहुँचाना चाहेंगे? स्टेज फियर को भगाना हो या पैशन को आगे बढ़ाना हो, इट्स इम्पोर्टेंट टू स्टार्ट विद द राइट ट्रेनिंग। The RJ Academy at Masti Media Network is now open for you. That too with a hybrid model for your convenience. 12 hours training per level. Flexible, individual focused syllabus offered for 14 years old and above. Selected trained voices to get an opportunity to host live on Radio Masti 24/7. Email a brief intro to info@radiomasti.com.sg requesting for an application form.
3: Good morning!
4: Best of Bollywood playing on Radio Masti 24/7 live. Have a masti bhara weekend.

0: सुबह की शुरुआत हो थोड़ी सी न्यूज के साथ, थोड़ी सी गॉसिप के साथ और बहुत सारी मस्ती के साथ। क्योंकि जब ट्यूसडे आता है ना, तो आती है आरजे अंतरा की बातों की बारिश। Your daily scoop of what's hot, what's viral and what's worth knowing. Served fresh with great music and my unbeatable charm, you see. Tune in to me on Masti Ka Mantra with RJ Antara. Har Tuesday subah 7 baje, sirf Radio Masti, 24/7 Life Pen.
1: The perfect recipe for you to unwind. Masti Weekends only on Radio Masti, 24/7 Life.

0: अरे अरे अब बस दस से दिल कहाँ भरेगा।
1: मस्ती टॉप 20 लेकर रेणुका जो आने वाली है। टाइम टू रेज द बार। रम्मा मस्ती टॉप 20 बॉलीवुड चार्ट बस्टर्स ऑफ द वीक फुल ऑन रेणुका स्टाइल। Friday evenings, 5 p.m. onwards, catch the OG rock star Renuka with the week's top chart busters. Musti Top 20, only on Radio Musti 24/7, the only live Bollywood radio across Southeast Asia since 2009.
2: आइए हम नवा बैठिए जाने जा। हेलो एंड गुड इवनिंग। जी हाँ, रेडियो मस्ती 24/7 पर आ चुकी है रेणुका। क्या लेके आई है? वाल लेके तो आई है वही वाला शो जो कि आपका पसंदीदा शो है। जी हाँ, फ्राइडे इवनिंग है तो हंगामा तो होना चाहिए, और हंगामा करने के लिए सबसे बड़ी बात होती है कि एक ऐसी आवाज़ और एक ऐसा शो जो कि मिलके कंट्रोवर्सीज पैदा करे, मजा आए, लड़ाइयाँ हो, बोले लोग कि यार क्या चल रहा है, क्या होगा गाना नंबर 10, कौन सा होगा गाना नंबर 15, कौन सा होगा गाना नंबर 1। वेल वी गोना ऑब्वियसली गो डाउन 20 to 1, और 20 to 1 करते करते बीच बीच में हम कुछ अपने पुराने साथियों से भी मिलेंगे। जी हाँ, पुराने साथी यानी कि वो वाले जो कि हमें बीच राह में छोड़ के चले गए लेकिन आज भी हमें याद आते हैं। Those will be the Bollywood flashback and the Bollywood top song of the hour, of course, जो आप सुनते रहेंगे। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि यहाँ पर गप्पे शप्पे चलेंगी। जी हाँ, मैं यहाँ पर बिल्कुल आपके लिए at your service पहुँच चुकी हूँ, और गप्पो शप्पो का मतलब ये होता है कि बीच बीच में gossip। जी हाँ, Bollywood की खास gossip जो कि आपको पता ही है कि मेरे पास भरमार होती है, right? So on Radio Masti guys, it's just a few minutes past 5 p.m. and यहाँ पर टाइम है मस्ती टॉप चार्ट्स का। दे आर फ्रेश, दे आर हॉट, दे आर स्पाइसी एंड दे आर हैपनिंग। जॉइन अस ऑन मस्ती टॉप 20। अब आखिरी फ्राइडे है मई का, तो चलिए आखिरी गाना मतलब कि नंबर 20 पर कौन सा है वो भी बता देते हैं।
3: यही तो, हाँ यही तो खासियत है आपकी।
2: इनकी खासियत भी ये है कि ये 12 से लेके सीधा 20 पर खिसके हैं। अब पूछिए भाई, कहने को तो बहुत ही बढ़िया। इनके पास हमारे धर्मा प्रोडक्शंस हैं, जी हाँ, जो कि इनके प्रोड्यूसर हैं। इस फिल्म का नाम है चांद मेरा दिल, और रिलीज हो चुकी है फिल्मों में हमारे थिएटर पे, और बहुत सारी बातें सुनने में आ रही है इसके बारे में। आपने देखी है क्या चांद मेरा दिल? अगर देखी है तो 9151896 3। आई एम डेस्परेट टू नो योर रिव्यू। ऑलराइट, दिस इज रेडियो मस्ती 24/7 एंड ऑफ कोर्स इट्स अ मस्ती टॉप चार्ट्स विद रेणुका। स्टे ट्यून्ड टिल 8 p.m.
4: ट्रेंडिंग सॉन्ग नंबर 20।

0: Are you even listening? या ऐसे ही जी जी किए जा रहे हो?
1: अरे डार्लिंग, why to fear when जीजी मार्ट is there?
0: क्या जी?
1: जीजी, जीजी मार्ट, your personal grocer. Just log on to ggmartonline.com. Grocery add to cart करो, check out करो और grocery at your doorstep.
0: वाह जी, क्या बात जी?
1: Order today from जीजी मार्ट, your personal grocer.
2: जब हमारा कोई शो होता है सुपर हिट तो आप कहते हैं और रेडियो मस्ती 24/7 कहता है क्यों नहीं. प्रेजेंटिंग द एनकोर ऑफ योर फेवरेट शोज, अनदर डे अनदर टाइम फॉर योर लिसनिंग प्लेजर ओनली, बिकॉज सुपर हिट्स डिजर्व अ रिपीट. चेक आउट द एनकोर शो स्केड्यूल ऑन आवर एप मेन्यू.
3: ओनली ऑन रेडियो मस्ती 24/7 लाइव, अ पार्ट ऑफ मस्ती मीडिया नेटवर्क सिंगापुर.
4: Flashback.

0: Radio Musty 24/7. Download Radio Musty 24/7 app to call us instantly or email, WhatsApp, text us from the app.
1: All right, हर किसी को मिले ना मिले आपको जरूर मिल जाता है यहाँ पर पूरा का पूरा माल जिसे कहते हैं रेडियो मस्ती 24/7 पर मस्ती टॉप चार्ट्स का धमाल किसके साथ
2: मस्ती टॉप 20 बॉलीवुड चार्ट बस्टर्स ऑफ द वीक फुल ऑन रेणुका स्टाइल
1: बड़े बड़े धुरंधर आए और चले गए जी हाँ पूरे के पूरे 20 के 20 गाने लूट रहे थे एक ही फिल्म से साइड ए साइड बी जिसे मैं कहती थी लेकिन आज के दिन में कितने रह गए हैं रेडियो मस्ती 24/7 पर जी हाँ दिस इज रेणुका विद यू आपको जोश में रखने के लिए फ्राइडे इवनिंग हम लेकर आते हैं मस्ती टॉप चार्ट्स और मस्ती टॉप चार्ट्स पे अगला गाना जो हमारा है वो है एक ऐसी फिल्म से जो कि रिलीज हो चुकी है जी हाँ रिलीज हो गई थी वो भी 2025 के टोरंटो इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में लेकिन हमारे और आपके देखने के लिए रिलीज होने वाली है 5 जून को बात कर रहे हैं हम बंदर जी हम मंकी की दिस इज एक्चुअली अ 2025 इंडियन क्राइम थ्रिलर फिल्म जिसको डायरेक्ट किया है अनुराग कश्यप ने और प्रोड्यूसर हैं निखिल द्विवेदी जी हाँ अब इस फिल्म को लिखा और उसके बाद रियल लाइफ इवेंट से इंस्पायर होते होते ये फिल्म में उन्होंने बॉबी टेवल को लीड रोल पे रखा और सानिया मल्होत्रा सपना पाबी सबा आजाद इंद्रजीत सुकुमारन एंड राजबी शेट्टी अलॉन्ग विद जितेंद्र जोशी सारे के सारे अब बेसिकली एक फिल्म स्टार के बारे में है जो थोड़े से बड़े हो रहे हैं उम्र में हु गेट्स अक्यूज्ड ऑफ रेप बाय हिज एक्स गर्लफ्रेंड जी हाँ दैट इज व्हाट द स्टोरी इज ऑल अबाउट अब इसमें ऑफ कोर्स समीर मेहरा नाम है हमारे अभय देओल का और ये फिल्म हाल ही में आने वाली है सुनने में तो यही आ रहा है कि भाई बहुत मजा आएगा तभी तो इस गाने का नाम है और ये पिछले हफ्ते 15 नंबर पे था तो इसको ज्यादा मजा नहीं आ रहा होगा हमारे साथ ऑन रेडियो मस्ती गाइस दैट इज गोइंग टू प्ले ऑन नंबर 19 फॉलोड बाय A song which has actually flipped जी हाँ and reached number 18 ये था number 16 पर पिछले हफ्ते Radio Masti 24/7 पर more gossip coming right across these two songs stay with me guys this is Renuka with you Masti Top Charts
0: trending song number 19

0: आम ले लो, ताजा मीठा आम ले लो, GGMartOnline.com से आम ले लो।
1: जब घर की याद आए, GGMartOnline.com से अल्फांसो आम मंगाए। ऑर्गेनिक, केमिकल फ्री, स्ट्रेट फ्रॉम देवगढ़, रत्नागिरी एंड मोर। नाउ एट GGMart। ऑर्डर नाउ एट GGMartOnline.com और कॉल 8085-6577।
2: जब एक धुन से सांस का पता चल जाता था, जब एक मिस्ड कॉल से आवाज का पता चल जाता था, घिसी हुई वीडियो टेप्स पर बनी हमारी क्रिस्टल क्लियर यादें।
3: आई लव यू रसना।
2: समोसा पैटीज, फूटी लिमका, फ्लेम्स से लेकर स्लैम बुक्स तक, झूठी बॉटल से कोल्ड ड्रिंक पीने को इनडायरेक्ट किस समझने वाले दिन। Your dose of 90s nostalgia, musty 90s mixtape with aapki 90s wali antra. Thursdays 11 a.m. onwards only on Radio Mercy 24/7 Live.
4: It's time for
5: Musty Song of the Hour.

0: गुलाबी ये प्याले ऐसे दे हवाले, क्या है ये, क्या है ये गाना, ओ माय गॉड, जलता है जिया मेरा भीगी भीगी रातों में. हाउ सजेस्टिव इज दैट गाइस. गुड इवनिंग एंड वेलकम वंस अगेन, इट इज रेणुका विद यू, रेडियो मस्ती 24/7, मस्ती टॉप चार्ट्स. From rocking the charts to ruling the weekly countdown, join us on Masti Top 20. अब ये देखो यार कि अभी तक जो आपने गाने सुने हैं ना, उनकी हालत ये हुई है कि सारे के सारे गिर गिर के खिसक खिसक के नीचे लुढ़क गए हैं. नंबर 20 पर जो आज आपने सुना, खासियत उसकी खासियत ये है कि सबसे ज्यादा लुढ़का है, ठीक है, 12 से 20 एंड ऑफ कोर्स द रेस्ट ऑफ देम एज वेल. लेकिन अब अगला गाना आने वाला है 17 जो गाना है ना भाई साहब, उसके बारे में तो आप पूछो ही मत, ना मुझसे पूछो ही मत. मतलब 17 नंबर वाला गाना है फ्रॉम द फिल्म है जवानी तो इश्क होना है. एंड ऑफ कोर्स देयर हैव बीन सेवरल बिजनेस बेसलेस एलिगेशंस जो कि बने हैं इस फिल्म के अगेंस्ट बाय वाशु भगनानी. मतलब एक स्मेयर कैंपेन ड्रिवन है. अब मुझे ये लगता है कि ये सारी मार्केटिंग का सीन है, राइट, बिकॉज जो मिस्टर भगनानी के साथ इस फिल्म का रिलेशनशिप है, वेल एक्चुअली इट डेट्स बैक टू 1995, जहां पर उनको 50% पार्टनरशिप और प्रोड्यूसर क्रेडिट दिया गया था ऑन अ प्रोजेक्ट जिसका सारा ग्राउंड वर्क हो चुका था. गुली नंबर 1 की बात कर रही हूं मैं, और वो फिल्म जाकर बनी एक मैसिव बॉक्स ऑफिस हिट, और उसकी वजह से मिस्टर भगनानी जो है किक स्टार्ट हो गए इंडस्ट्री में. अब उसके बाद भी बड़े सारे साल हो गए, लेकिन यहां पर कोई ऐसी बात नहीं, उन्होंने कॉन्ट्रोवर्सी होने नहीं दी. भाई अब हाल ही में मिस्टर भगनानी जो है ना, उन्होंने एक केस भी फाइल कर दिया है, मतलब मुंबई से बहुत दूर फाइल किया है, लेकिन लीगल एक्शन इनकी फिल्म के अगेंस्ट. अब बड़े परेशान है भैया हमारे जो डेविड धवन है और कौन कौन है, क्योंकि 5 जून को ये वाली फिल्म रिलीज होने वाली है, और फिल्म के बारे में गंदी गंदी बातें बोलने से पहले दूसरे को सोचना तो चाहिए भाई, कितना नुकसान हो सकता है. हो जाओ, हमारा क्या जा रहा है, रेडियो मस्ती 24/7 पर गॉसिप चलती रहेगी एंड ऑफ कोर्स गाने भी टॉप चार्ट्स में. आज का गाना नंबर 1 कौन सा होगा, सोचना शुरू करो, टाइम है बट सोचना शुरू करो.
1: ट्रेंडिंग सॉन्ग नंबर 17.

0: ये तो होता ही है, अगर जवानी है तो इश्क होना है, क्या बात है, और वो जवानी ही कहाँ जिसमें इश्क नहीं हुआ। वेलकम बैक रेडियो मस्ती 24/7 पर।
1: दे आर फ्रेश, दे आर हॉट, दे आर स्पाइसी एंड दे आर हैपनिंग। जॉइन अस ऑन मस्ती टॉप 20।
0: अब जॉइन तो आप कर ही चुके हो, इसीलिए Might as well stay back with me, my darlings. जी हाँ, अगला गाना हमारे यहाँ पर गाना नंबर 16 है। गाना नंबर 16 जो आप सुनेंगे, well, उसको रिलीज किया गया था अप्रैल के महीने में। बड़ा ही highly anticipated successor track है, और वो भी जुबिन नौटियाल की आवाज में। Well, let me tell you guys that the connection. जी हाँ, फैंस जो है ना, इस गाने को कंप्लीट इमोशनल साइकिल कहते हैं। एक था हम नवा मेरे 2018 की एक बढ़िया सा गाना, which was talking about the initial pain of unrequited love, and अब ये जो नया वाला है मेरे हमनवा 2026 का, it echoes it with louder, deeper heartbreak. जी हाँ, 2026 का जो track है, it is a collaboration featuring Jubin Nautiyal, The Rish and Rocky Khanna. और आप सोच सकते हैं कि गाना उफ, आपको अगर मैं नहीं सुनाऊंगी तो आप सोचोगे किसके बारे में बात कर रही है।
2: तू दिल है मेरा,
0: और ये एक ऐसा गाना है जो कि उठा है अपनी जिंदगी में। आफ्टर ऑल लव ऑलवेज स्ट्राइक्स अ कॉर्ड। What a lovely voice this guy has, right? So, आपको पता है इस गाने की प्रमोशन में क्या किया था उन्होंने? बड़ा ही अलग तरीके से टी सीरीज एंड ऑफकोर्स जुबिन जो है, इन्होंने मैसिव जैम विद जुबिन, जी हाँ, रॉ वॉइस सिंगिंग कॉन्टेस्ट शुरू किया था, जहां पर जो फैंस हैं दे कुड रिकॉर्ड 3 मिनट का गाना, acoustic cover of the song using only raw instruments like guitars or pianos, and फिर ओए होए होए, they could actually sing along with Jubin as well. Not bad, हाँ, this is quite amazing. तो चलिए ये वाला गाना सुनते हैं, और उसके बाद जो नंबर 15 पर आएगा वो तो बस वाओ ही है। वाओ, सुनते हैं बैक टू बैक ये गाने। Welcome once again, Renuka with you, Musti Top Charts.
3: Hit us on the gram. It's Radio Musti 24/7. And don't forget to like our ever-buzzing Facebook page, Radio Musti 24/7 Singapore.
4: Check it out.
3: Trending song, number 16.

0: हाल ये हो गया हमारे दिल का कि भैया एक फिल्म जो हमें देखने का मन करता है आते ही वो किसी और भाषा में भी आए तो हम ना समझ लोगों को, जी हाँ जो हिंदी स्पीकिंग है उनको भी लगता है यार चलना, देखकर आते हैं जितनी समझ आएगी आएगी, चलना यार रहा नहीं जा रहा।
1: From rocking the charts to ruling the weekly countdown, join us on Masti Top 20.
0: You tell me, is there any such film, guys, that you just cannot wait to watch? For me, it is Drishyam. जी हाँ, Drishyam 3 का box office collection. आप पूछिए मत. मोहनलाल की much awaited crime thriller. जी हाँ, massive hit जिसे कहते हैं. इसे direct किया जीतू जोसेफ ने and इसको release किया गया था May 21st को and it has crossed the prestigious 200 crore mark worldwide. पहले ही हफ्ते में, जी हाँ, पहले ही हफ्ते में. So it has emerged as one of the biggest Malayalam films of the year. इसमें क्या हैरानी की बात है, मतलब या तो हमें बड़ी हैरानी हो, कोई ऐसी हैरानी टाइप हुई नहीं है सीरियसली स्पीकिंग, क्योंकि हमें लग ही रहा था कि ये जो हमारे मोहनलाल जी हैं ये जब वापस आते हैं विद द आइकॉनिक जॉर्ज कुट्टी टाइप बनकर तो भाई उसके बाद में नोबडी कैन स्टॉप हिम फ्रॉम रीचिंग राइट अप देयर. आई लव द क्लाइमैक्स ऑफ दृश्यम ऑलवेज. व्हाट अबाउट यू गाइस, डू यू लाइक इट और डू यू लाइक इट?
2: क्या करूं प्यार पे ही मुझको एतबार नहीं, क्या करूं प्यार पे ही.
0: भाई तो इतना दुखी आदमी क्यों है? वैसे तो तेरे को इसीलिए पीछे भेजा गया है क्योंकि तुझे प्यार पे एतबार नहीं, नंबर 9 पे चल रहा था तू और 14 पे आके मुंह के बल गिरा है. खैर चलो, अपनी अपनी जिंदगी है, अपनी अपनी किस्मत है. रेडियो मस्ती 24/7 पर गाना नंबर 1, जी हाँ कौन सा होगा बताइए बताइए. इफ यू कैन गेस दैट टुडे, आई एम टेलिंग यू, यू गाइज आर गोइंग टू बी गेटिंग अ बिग चुम्मा फ्रॉम मी. ऑलराइट, सो well, not literally, but yeah, literally. Okay, get it? All right. See you next hour, guys. This is Renuka with you, Radio Masti 24/7.
3: Hit us on the gram. It's Radio Masti 24/7. And don't forget to like our ever-buzzing Facebook page, Radio Masti 24/7 Singapore.
4: Check it out.
3: Bollywood Flashback.

0: राज की बात बताऊं, मेरी आवाज कभी अच्छी थी ही नहीं।
1: अगर हम सबकी जानी पहचानी गोल्डन वॉइस के मालिक दी अमीन सयानी जी का ये कहना है, तो सोचिए आप भी अपनी आवाज को सबके दिलों तक कैसे ले जा सकते हैं। द आरजे एकेडमी एट मस्ती मीडिया नेटवर्क इज नाउ ओपन फॉर यू। That too with a hybrid model for your convenience. 12 hours of training per level. Flexible individual focused syllabus offered for 14 years and above. Selected trained voices to get an opportunity to host live on Radio Masti 24/7. Email a brief intro to info@radiomasti.com.sg requesting for application form.
2: Namaste behno aur bhaiyo, main aapka dost Amin Sayani bol raha hoon.
3: 40% off, 40% joy Alukas.
4: 40% off? Oh my god, let's go, let's go.
5: Offer aisa ki aap bhi khud ko rok nahi payenge. Joy Alukas laya hai the biggest jewelry sale. Flat 40% off on making charges for gold, diamond, polki and precious jewelry. And 100% value on diamond exchange. Offer valid till 14 June 2026. Visit 412-134 and 320 Serangoon Road. Joy Alukas, the world's favorite jeweler.
6: Trending song, number 14.

0: They are fresh. They are hot. They are happening. From rocking the charts to ruling the countdown. Yes, Musty Top 20. Pumping up Friday evenings, 5 p.m. onwards. The latest and the brightest. The week's top chart busters. Musty Top 20. Only on Radio Musty 24/7 Live. The only live Bollywood radio across Southeast Asia since 2009.
1: क्या मिलता है लोगों को गंदी गंदी बातें करके, क्या मिलता है लोगों को सामने वाले को क्रिटिसाइज करके, क्या मिलता है लोगों को दूसरे के दुख पे नमक डाल के, बताइए। They are fresh, they are hot, they are spicy and they are happening. Join us on Musty Top 20. Hot spicy, जी हाँ, मैं बिल्कुल यहाँ पहुंच चुकी हूँ। अरे मेरी बात नहीं हो रही, गानों की हो रही थी। चलो कोई ना, रेडियो मस्ती 24/7। जी हाँ बिल्कुल, फ्राइडे शाम है 6 बजे के उस पार, मैं आपके साथ रेनुका, और अगर आप ऑन कोर सुन रहे हैं तो वेल ये संडे शाम है और 6 बजने के उस पार मैं आपके साथ रेनुका। जी हाँ, वाओ, व्हाट अ कोइंसिडेंस। अच्छा ऐसा है कि मैं बात कर रही थी कि भाई कुछ लोग जब से सोशल मीडिया मिला ना, उन्हें लगा है कि उनको तो ना बिल्कुल हक मिल गया है ट्रोल करने का लोगों को। सो हाल ही में इस ट्रोलिंग के उस पार कौन है, शमिता शेट्टी। जी हाँ, जो बहन है हमारी शिल्पा शेट्टी जी की, तो वेल शी स्ट्रॉन्गली रिएक्टेड कि भाई ये ऑनलाइन इनको जो ट्रोल कर रहा है कि तू 47 ईयर ओल्ड हो गई है, तेरी शादी नहीं हुई, अब पूछो तुम्हारा मतलब का क्या जा रहा है, बताओ तुम सिंगल क्यों हो, मतलब व्हाट द हेल, राइट। सो शी इज लाइक स्लैमिंग द माइंडसेट, शी सेइंग क्या है एक औरत को उसके मैरिटल स्टेटस के बेसिस पर जज करने वाले, तुम्हें क्या मिला मेरे साथ ऐसे बात करके। उफ, बहुत ही जबरदस्त सा जवाब, एंड आई एम प्रीटी इंप्रेस्ड विद दिस गर्ल। Quite a pretty gana, isn't it? This is ruling on number 13. Pichle hafte ye tha number 18 par. Do you guys think it's rightly gone up the ladder? Ya aapko lagta hai ye gana itna mast nahi hai? Bataiye, bataiye mujhe. Radio Musty 24/7 par intezar kar rahi hu main aapke messages ka on 9151896. Good evening.
2: Radio Musty 24/7. Download Radio Musty 24/7 app to call us instantly or email, WhatsApp, text us from the app. Trending song, number 13.

0: भाई तुझे इतनी टेंशन है उसके अकेले जाने से, तो तू साथ चला जा। गुड इवनिंग, दिस इज रेडियो मस्ती 24/7, फुल ऑन मस्ती। जी हाँ, ऑन अ फ्राइडे इवनिंग कम्स ओनली विद मस्ती टॉप चार्ट्स।
1: दे आर फ्रेश, दे आर हॉट, दे आर स्पाइसी एंड दे आर हैपनिंग। जॉइन अस ऑन मस्ती टॉप 20।
0: आइए आइए, आप सोच रहे हैं कि भाई ये कहां से कहां तक गाने आ चुके हैं, तो वेल लेट मी टेल यू, अगला गाना नंबर 12 होने वाला है। तो यस, वी हैव ऑलरेडी गॉन फ्रॉम नंबर 20, 19, 18, 17 करते करते 12 पर आ पहुंचे, और जो 12 नंबर पर है वो पिछले हफ्ते 13 नंबर पर था। मतलब एक सीढ़ी सही, लेकिन फिर भी चढ़ा तो है ना, दैट इज व्हाट मैटर्स। जैसा कि मैं हमेशा कहती हूं आपको कि हमें अपनी पर्सनैलिटी एक दिन पहले से, मतलब कल से आज बेहतर बनानी है। उफ, टू कॉम्प्लिकेटेड फॉर Friday evening, guys. But you know what? Life is such. ये मैं नहीं कह रही हूँ, कह रहे हैं हमारे टाइगर श्रॉफ के डैडी, दैट इज जैकी श्रॉफ जी, कि भाई 2014 में टाइगर श्रॉफ ने डेब्यू किया था। एंड ऑफकोर्स उस समय ही बिकेम सॉलिड सॉलिड लॉयल फैन बेस, ये वो इंस्पिरेशन अपनी मार्शल आर्ट्स की ट्रेनिंग, फिटनेस जर्नी, फलाना ढमकाना, ये वो। अब क्या हो गया भाई, एक भी हिट नहीं आ रही है, क्या बात है, चार चार फ्लॉप लेके बैठ गया भाई, हुआ क्या? तो जैकी ने ये कहा, देखो बड़े अच्छे डैडी हैं, बाय गॉड, मैंने भी बहुत जिंदगी में अप्स एंड डाउन्स देखे हैं अपनी एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में, मुझे चिंता नहीं है टाइगर की जर्नी इन बॉलीवुड, क्योंकि मुझे लगता है डेस्टिनी फिल्मों की होती है, इंसानों की नहीं, और तुम्हारे एक एक्टर के हाथ में नहीं, उसमें बहुत कुछ होता है, राइट? एंड टाइगर विल बी ओके बिकॉज ही कीप्स वर्किंग हार्ड, और हम एक्टर्स हैं, वी हैव टू गो थ्रू एवरीथिंग, और टाइगर को ये बात पता है। सो वेल, सिंसियरली रहेगा अगर अपने काम में डूबा हुआ, तो वे डेफिनेटली आगे बढ़कर कहीं ना कहीं पहुंचेगा। हाय राम, तालियां। ऐसे डैडीज हो तो बच्चे कितने इनकरेज होता, नहीं? And that is gone number 12 coming on Radio Masti 24/7 followed by another beautiful track. Alright, that is Chhap Tilak and followed by
2: Jinni Soni Lagdi Hai Mainu Kise Hor Na Lagge Lagge
0: 14 से 11, जी हाँ, दैट इज वेयर दिस गाना हैज रीच्ड। पति पत्नी और वो दो, मैंने जाके देखी है फिल्म, आपने देखी क्या, बताइएगा मुझे।
3: Radio Musty 24/7 Live, a part of Musty Media Network Singapore.
4: Check it out.
3: Trending song, number 12.

0: अच्छा सुनो जरा, ग्रोसरी ना खत्म हो रही है, तो 1 kg आटा,
1: हाँ जी जी,
0: 1/2 kg मसूर दाल,
1: जी जी,
0: काजू किशमिश, ओ हाँ, अरे वो नमकीन भी खत्म हो रहे हैं,
1: जी जी,
0: आर यू इवन लिसनिंग, या ऐसे ही जी जी किए जा रहे हो?
1: अरे डार्लिंग, व्हाई टू फियर व्हेन जी जी मार्ट इज देयर?
0: क्या जी?
1: जी जी, जी जी मार्ट, योर पर्सनल ग्रोसर, जस्ट लॉग ऑन टू ggmartonline.com, ग्रोसरी ऐड टू कार्ट करो, चेकआउट करो और ग्रोसरी एट योर डोरस्टेप।
0: वाह जी, क्या बात जी,
1: ऑर्डर टुडे फ्रॉम जीजी मार्ट, योर पर्सनल ग्रोसर।
2: ट्रेंडिंग सॉन्ग नंबर 11।

0: hit us on the gram. It's Radio Musti 24/7. And don't forget to like our ever buzzing Facebook page, Radio Musti 24/7 Singapore.
1: Check it out.
2: आज मेरे से अभी अभी पूछ रही है ये लड़की कि भाई धुरंधर के गाने नहीं चल रहे आज. आई नो यू गाइज आर ऑल्सो थिंकिंग व्हाट आई एम थिंकिंग. आज के हमारे शो पे अभी तक धुरंधर का एक गाना चला है. लाइक सीरियसली गाइज.
3: मस्ती टॉप 20 बॉलीवुड चार्ट बस्टर्स ऑफ द वीक फुल ऑन रेणुका स्टाइल.
2: आई नो आपको ये बात पता है कि इस घंटे मतलब इस घंटे इन द सेंस कि इस शो पर एक और गाना तो गहरा हुआ तो चलेगा ही चलेगा राइट. लेकिन कब चलेगा इज द क्वेश्चन. रेडियो मस्ती 24/7 चल रहा है मस्ती टॉप चार्ट्स रेणुका के साथ. जी हाँ, इस टाइम पर हम बात कर रहे हैं उन रिश्तों की जो कि इधर उधर चले जाते हैं, डिफरेंट डायरेक्शंस में ग्रो करते हैं. नो आई डोंट मीन फिजिकली, बिकॉज उनमें से एक इंसान हॉरिजॉन्टली ग्रो किया, एक इंसान वर्टिकली, बट दैट डजंट मीन व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट. आई एम टॉकिंग अबाउट द डिस्टेंस. क्योंकि जब आप किसी एक इंसान के साथ होते हैं तो आपको लगता है उफ इट्स मैजिक. और वो मैजिक कहाँ गायब हो जाता है, क्योंकि well, you have to part sometimes over scandalous circumstances. जी हाँ, मतलब अब आप ये सोचिए कि scandalous circumstances. बात कर रही हूँ मैं पूजा भट्ट और साथ ही में हमारे बॉबी डियोल की. भाई अंतरा जी का फेवरेट गाना कैसे हटाएंगे हम. Coming on gaana number 10. Ji haan, it used to be 12 by the way, so it has also grown up the ladder. This is the next gaana coming from Dhurandhar. Lekin back to the relationship where 90s mein definitely ye dono ke dono dating shating kar rahe the. Jab Bobby Deol ka official debut nahi hua tha. Lekin uske baad पूजा भट्ट जो कि एक बहुत ही बड़ी बड़ी फैमिली को बिलोंग करती थी, वेल शी सेड दैट दे सिंपली ग्रू इन डिफरेंट डायरेक्शंस एंड सेड इट वर्क्ड टिल इट डिडंट वर्क. और बस उसके बाद डिटेल्स में क्या जाना यार, छोड़ो परे सानू की, है ना. हमें तो ये लेना देना है भैया कि आज लड़का काम अच्छा कर रहा है और अच्छी लड़की के साथ उसकी शादी हुई पड़ी. तो पूजा भट्ट तुसी घर च बैठो. ना जी ना, तुसी आगे ना आओ. ओके, जस्ट ग्रो इन योर डायरेक्शन. गुड इवनिंग.
0: Trending song number 10. Oh, yeah.

0: coo coo coo coo. I can't do this coo coo coo for like so long, guys. But it sounds fantastic. Coo coo.
1: They are fresh. They are hot. They are spicy. And they are happening. Join us on Masti
0: Fresh and Hot and Spicy. That's what we try to do on this show, guys. With lovely Ghanas, the newly introduced and launched Ghanas, and the ones that are hitting right up the ladder. Bringing to you Masti Top Charts is Renuka. तो भाई अब ऐसा है कि चोली के पीछे तो जो है सो है, मतलब आगे क्या है हमारे इस शो पर, दैट इज मोर रेलेवेंट. आप जानते हैं रेलेवेंट, जी हाँ, इस शब्द से मुझे याद आया कि सुष्मिता सेन, अब किसको वो लड़की नहीं पसंद है, आप ये बताइए. मतलब आई रियली हैव एंजॉयड, आई हैव एडमायर्ड द वे शी इज ग्रोन, द वे शी कैरीज हरसेल्फ, द वे शी स्टैंड्स अप फॉर हरसेल्फ, स्टैंड्स अप फॉर द राइट थिंग, एंड इज अमेजिंग व्हेन शी स्टार्ट स्पीकिंग द राइट स्टफ, राइट. तो भाई ऐसा है कि शी बिकेम अ सिंगल मदर एट द एज ऑफ 24, जैसा कि हम जानते हैं, जब उसने अडॉप्ट किया हर एल्डर डॉटर रेने, एंड दिस वॉज इन द ईयर 2000. लेकिन आप जानते हैं, अपार्ट फ्रॉम ऑल द रेजिस्टेंस, घर वाले कुछ भी बोले, पड़ोसी कुछ भी बोले, रिश्तेदार कुछ भी बोले, सबसे बड़ी बात है दैट हर मैनेजर डिसाइडेड टू स्टॉप रिप्रेजेंटिंग हर. कहां मैं जा रहा हूं, मुझे नहीं रहना तुम्हारे साथ, क्योंकि अब तो तुम मां बन चुकी हो, और मां बनने के बाद तो तुमको कैरेक्टर रोल्स भी नहीं मिलेंगे. हाय राम, अब क्या होगा. हाल ही में सुष्मिता वॉज टॉकिंग ड्यूरिंग एन इंटरव्यू, एंड शी सेड द रेजिस्टेंस शी फेस फ्रॉम द इंडस्ट्री आफ्टर डिसाइडिंग टू अडॉप्ट अ चाइल्ड. ओ माय गॉड, सभी कहने लगे कि भैया तुम अपने करियर के बारे में सीरियस ही नहीं हो. कौन इंसान 24 साल की उम्र में एक बच्चा अडॉप्ट करके बैठ जाता है. आर यू श्योर यू वांट टू डू दैट. एंड देन शी सेड, सबसे बड़ी रेजिस्टेंस औरत ही औरत की दुश्मन होती है, एंड यू नो व्हाट, आई स्टैंड बाय दैट एज वेल. सो सेल्फ मेड वुमन, शी सेड, आई डोंट हैव एनी गॉडफादर्स, नोबडी गेव मी एनी प्लेटफॉर्म, आई डिड एवरीथिंग ऑन माय ओन, इसीलिए तुम्हारे रूल्स मुझे अप्लाई नहीं होते. ओए होए, क्या बात कही है लड़की ने, मजा आ गया. And you're listening to Gaana number 9, which is from Cocktail 2 के soundtrack से. जी हाँ, ये था 10 नंबर पर पिछले हफ्ते. देखिए धीरे धीरे कैसे हम छोटी छोटे स्टेप्स लेके अपने आप को इम्प्रूव करते हैं, नहीं ऐसे ही जिंदगी में आगे बढ़ते हैं. क्या बात है, गुड इवनिंग.
2: Hit us on the gram. It's Radio Musti 24/7. And don't forget to like our ever buzzing Facebook page, Radio Musti 24/7 Singapore.
3: Check it out.
2: Trending song, number 9.

0: आम ले लो, ताजा मीठा आम ले लो, GGMartOnline.com से आम ले लो।
1: जब घर की याद आए, GGMartOnline.com से अल्फांसो आम मंगाए। ऑर्गेनिक, केमिकल फ्री, स्ट्रेट फ्रॉम देवगढ़, रत्नागिरी एंड मोर। नाउ एट GGMart। ऑर्डर नाउ एट GGMartOnline.com और कॉल 8085-6577।
2: Some stories are easy to tell, पर कुछ कहानियाँ दिल के अंदर ही रह जाती हैं। एक छोटी सी बात पर पेरेंट्स से दूरी, एक प्यार जो कभी कह नहीं पाए, या वो करियर डिसीजन जो आज भी रातों की नींद चुरा लेता है। On Masti Media Network, we're opening a safe space, Dear Masti, दिल से, जहाँ आप लिख सकते हैं वो सब जो आप कह नहीं पाते। हर हफ्ते हम पढ़ेंगे आपके अनोनिमस लेटर्स, और कभी कभी एक गाना कह देता है वो बात जो लफ्जों में नहीं होती। बिकॉज समटाइम्स रेडियो पर बैठा एक अनजाना इंसान आपको दुनिया से ज्यादा समझ लेता है। सो राइट टू अस, डियर मस्ती, दिल से। And on Masti Top Charts, अभी आप सुन रहे थे Dear Masti दिल से। I am absolutely in love with that show। और सिर्फ मैं ही नहीं, हमारे बहुत से सुनने वाले, जी हाँ, जो चिट्ठियाँ भी लिख रहे हैं, they are also in love with this show। So guys, I think आपको ये वाला show ज़रूर सुनना चाहिए। और क्यों सुनना चाहिए, I'll tell you why। Because this is one show जहाँ पर आपको पता लगता है कि सभी लोगों की जिंदगियों में क्या क्या परेशानियाँ बीत रही हैं, क्या क्या चल रहा है, क्या क्या स्ट्रेस से लोग गुजर रहे हैं, या क्या क्या खुशियाँ हैं उनके मन में। खैर, खुशियाँ लोग कम शेयर करते हैं हमारे साथ, लेकिन इस शो का पर्पज इज ऑब्वियसली टू मेक that you guys are doing good mentally and psychologically, you are in a good place, right? तो इसीलिए हम कहते हैं कि अगर आपको कोई भी असमंजस में है आप, and you know, you sometimes think कि यार मुझे समझ नहीं आ रहा मैं क्या करूँ, मैं ये करूँ या ये करूँ, then write to somebody who is absolutely neutral, और वो somebody है हम, alright? We don't need to know who you are, we really don't need to know anything, all we need to know is what is that issue which is troubling you in life, and we would love to support you in any way that we can. So isliye please ek baar bhi mat sochna ki yaar ye hamara mazak udayenge ya inko agar pata lag gaya hai meri zindagi mein to 10 aur logon ko batayenge. Na, the code is that is the code. Smisiyara lai maskara lakiya nibhai rakhna गाना नंबर 8 से ये पहुंचा है गाना नंबर 8 पर मतलब वही का वही रेडियो मस्ती 24/7 पर। आई विल सी यू नेक्स्ट आवर गाइस। फिलहाल के लिए ये है गाना नंबर 8 फॉलोड बाय अ ब्यूटीफुल रेट्रो जो कि यहां पर चलने वाला है एज अ फ्लैशबैक सॉन्ग, राइट? एंजॉय इट। मैं आपको मिलती हूँ 7 बजने के उस पार। आ जाओ
3: Radio Musty 24/7. Download Radio Musty 24/7 app to call us instantly or email, WhatsApp, text us from the app. Trending song number 8.

0: राज की बात बताऊं, मेरी आवाज कभी अच्छी थी ही नहीं।
1: अगर हम सबकी जानी पहचानी गोल्डन वॉइस के मालिक दी अमीन सयानी जी का ये कहना है, तो सोचिए आप भी अपनी आवाज को सबके दिलों तक कैसे ले जा सकते हैं। द RJ Academy एट मस्ती मीडिया नेटवर्क इज नाउ ओपन फॉर यू। That too with a hybrid model for your convenience. 12 hours of training per level. Flexible individual focused syllabus offered for 14 years and above. Selected trained voices to get an opportunity to host live on Radio Masti 24/7. Email a brief intro to info@radiomasti.com.sg requesting for application form.
2: Namaste behno aur bhaiyo, main aapka dost Amin Sayani bol raha hoon.
3: Hollywood Flashback.

0: They are fresh. They are hot. They are happening. From rocking the charts to ruling the countdown. Yeah, Musty Top 20. Pumping up Friday evenings, 5 p.m. onwards. The latest and the brightest. The week's top chart busters. Musty Top 20. Only on Radio Musty 24/7 Live. The only live Bollywood radio across Southeast Asia since 2009.
1: कुछ भी, मैं तो देखूं कुछ भी चलता है यहाँ पर रेडियो मस्ती 24/7 पर. बात कर रही हूँ हमारी बॉलीवुड इंडस्ट्री की. जी हाँ, कुछ भी चलता है. एज यू नो, दिस इज द फुल टू फुल ऑन बॉलीवुड शो व्हिच इज कॉल्ड मस्ती टॉप चार्ट्स. From rocking the charts to ruling the weekly countdown, join us on Musti Top 20. Musti Top 20 पर आपका स्वागत कर रही है रेणुका. जी हाँ, 5 बजे से आपके साथ टिकी हुई हूँ यहाँ पर. कितने गाने चला दिए बताओ आप. गाने नंबर 7 पर पहुंच चुके हैं हम. हाय, इतने सारे हो गए. हाँ हो गए. और इन सारों में ले देके 2 धुरंधर के गाने. आई एम सो प्राउड ऑफ दैट अचीवमेंट नाउ डेज गाइज. आई रियली मस्ट टेल यू. बात करने वाली हूँ मैं उनके बारे में जिनकी जिंदगी और जिनके करियर से हम सारे के सारे बड़े प्राउड होते हैं. जी हाँ, ऐ साडा रणवीर सिंह पुत्र. हाँ जी, तो अब हुआ कुछ ये है कि इनका एब्रप्ट एग्जिट फ्रॉम डॉन 3 एंड non-cooperation directive issued by the Federation of Western India Cine Employees just sounds so high and mighty, right? तो हमारी शोभा डे डार्लिंग ने क्या बोला? She has criticized the Federation's actions because she always stands for the opposite. आप बोलोगे left जाना, तो बोलेगी right जाना चाहिए. Right जाना, तो वो नहीं नहीं, left में ही हमारा रास्ता है. That is शोभा डे for you. But sometimes she talks sense. By the way, that is my view. तो अब ऐसा है, she questioned what she described as a growing culture of power and control in the industry. And साथ में कहा ये जो हमारा रणवीर सिंह है ना, he is like the Delhi Gymkhana Club. जी हाँ, जैसा कि आप जानते हैं Delhi Gymkhana Club का बहुत ही एक major सा controversy चल रही है कि भाई क्या है ये, इसको तोड़ो फोड़ो, इनको निकालो यहाँ से types, you know, because ये बहुत अपने आप को समझते हैं. So she says, I see similarities between the two controversies. और दोनों के दोनों जो हैं authority, exclusion and punishment से related हैं. उन्होंने कहा कि भाई रणवीर सिंह को क्यों इस से निकाला जा रहा है, क्या बात है, मतलब बात क्या है, ये इतनी बड़ी बात हो गई कि आपने बोला छोड़ दो, मतलब भारत छोड़ो आंदोलन टाइप्स. I quite like this gana, by the way. It's coming on number 7, Radio Musti 24/7. आप पूछोगे रेनू का बता नहीं तुमने पिछली बार कहाँ था. अरे मैं ही बताऊंगी क्या सब कुछ, कुछ तो याद रखा करो. Good evening.
2: Hit us on the gram. It's Radio Musti 24/7. And don't forget to like our ever buzzing Facebook page, Radio Musti 24/7 Singapore.
3: Check it out.
2: Trending song, number 7.

0: अच्छा सुनो जरा, ग्रोसरी ना खत्म हो रही है तो 1 kg आटा,
1: हाँ जी जी,
0: आधा kg मसूर दाल,
1: जी जी,
0: काजू किशमिश, ओ हाँ, अरे वो नमकीन भी खत्म हो रहे हैं,
1: जी जी।
0: आर यू इवन लिसनिंग या ऐसे ही जी जी किए जा रहे हो?
1: अरे डार्लिंग, व्हाई टू फियर व्हेन जीजी मार्ट इज देयर।
0: क्या जी?
1: जीजी मार्ट, योर पर्सनल ग्रोसर। जस्ट लॉग ऑन टू ggmartonline.com, ग्रोसरी ऐड टू कार्ट करो, चेकआउट करो और ग्रोसरी एट योर डोरस्टेप।
0: वाजी, क्या बात जी।
1: ऑर्डर टुडे फ्रॉम जीजी मार्ट, योर पर्सनल ग्रोसर।
2: थैंक यू टू शाही महारानी फॉर द स्पेशल ट्रीट।
3: थैंक यू टू शाही महारानी फॉर मेकिंग दिस मदर्स डे मोर स्पेशल।
4: थैंक यू शाही महारानी फॉर कंफर्टिंग एंड माउथ वाटरिंग फ्लेवर्स।
3: थैंक यू,
5: थैंक यू,
4: थैंक यू,
2: थैंक यू, वी लव यू।
6: For 25 years, Shahi Maharani has brought royal North Indian flavors to Raffle City. Celebrate with 6 Shahi Signature Wet and Non-Veg dishes for just $25 plus. Served hot on your table. Now on till 30th June with minimum spend of $100 plus per table. 25 years of royal flavors. Only at Shahi Maharani North Indian Restaurant. Book now at shahimaharani.com or call 6235-8840. Terms and conditions apply.
7: It's time for
8: Masti Song of the Hour.
9: Song of the Hour.

0: It's Radio Musti 24/7. And don't forget to like our ever buzzing Facebook page, Radio Musti 24/7 Singapore.
1: Check it out.
2: सातवें नंबर के बाद ना मन में बहुत ज्यादा धक धक धक धक धक धक धक धक होने लगती है। रेडियो मस्ती 24/7 पर आप हैं रेणुका के साथ। अरे नहीं पता आपको,
3: मस्ती टॉप 20 बॉलीवुड चार्ट बस्टर्स ऑफ द वीक फुल ऑन रेणुका स्टाइल।
2: जी बिल्कुल, एंड योर डार्लिंग हैज बीन विद यू टिल्स 5 इन द इवनिंग ट्राइंग टू गिव यू द अपडेट ऑन द डाउनलोड ऑफ ऑल दैट्स हैपनिंग इन बॉलीवुड टुडे। ये सारी इंफॉर्मेशन के बाद ना आप लोग एक हफ्ता आसानी से जिंदा रह सकते हो, क्योंकि आपको इतना कुछ पता होता है। देयर सो मच ऑफ गॉसिप, राइट। वेल, अब एक और गॉसिप भी देती हूँ आपको, गाना नंबर 6 और 5 बताने से पहले, कि यो हनी सिंह, जी हाँ यो हनी सिंह फिलहाल आजकल फिर से बात कर रहे हैं अबाउट मेरा ना डार्केस्ट फेज था मेरी लाइफ का, जब मैं ड्रग्स लेता था। तो भाई इसमें नई बात क्या है, तू ये बता। मतलब he was at the peak of his fame, all right, and peak of his fame में he was using a substance, और वो substance का ये है कि भाई ये तो addiction हो जाती है, ऊपर से bipolar disorder अलग से, so he said उसके बाद मैं totally गायब हो गया था। क्यों हो गया था, मुझे अक्षय कुमार और शाहरुख खान ने बोला भाई तेरी जिंदगी खराब हो जाएगी, बर्बाद हो जाएगी, छोड़ दे ये सारी हरकतें, लेकिन नहीं, ऐसा तो होगा ही नहीं। सो वेल, 2011-2014 यो हनी सिंह, जी हाँ, इमेंस फेम, फाइनेंशियल सक्सेस, क्या क्या जो बोला, लेकिन मैं खुश नहीं था। आई वॉज एट माई पीक इन 2013 and 2014, लेकिन आई वॉज नॉट इन माई सेंसेस। मुझे लगता था मैं तो अलग स्टाइल से चलूंगा, ये वो, सब लोगों को यू नो आई शो देम डाउन, डिसरिस्पेक्ट करूंगा, और मैं अपने आप को भगवान मानता था। एंड देन आई रियलाइज्ड, भाई साहब मैं तो इंसान भी ना बन सका। वाह, नैना लड़ाने के लिए आप नंबर 6 पर ही टिकी हुई हैं, पिछले हफ्ते से हिलने का नाम नहीं ले रही। So guys, get ready to welcome एक नया गाना, वो भी टॉप 4 में। Can you believe it? It's getting more and more exciting nowadays, you know, to host this show. What do you think, गाना कौन सा होने वाला है? Any guesses? Number 1, number 2, number 3? कुछ तो बताओ यार। Good evening.
0: Trending song number 6.

0: Radio Musti 24/7. Download Radio Musti 24/7 app to call us instantly or email, WhatsApp, text us from the app.
1: All right, धीरे धीरे हम पहुंच रहे हैं क्लाइमैक्स की तरफ. नहीं नहीं, आपके दिमाग में जो क्लाइमैक्स चल रहा है वो नहीं, बात कर रही हूँ मैं मस्ती टॉप चार्ट्स के क्लाइमैक्स की.
2: They are fresh, they are hot, they are spicy and they are happening. Join us on Masti Top 20.
1: अगर कोई इतना hot, happening, spicy हो तो भाई उसको तो होना ही चाहिए ना Masti Top Charts में. मैं इंसानों के अलावा गानों की बात भी कर रही हूँ. Well, on Radio Masti 24/7, guys. धीरे धीरे देखिए ना, आप और हम चलते चलते पहुंच रहे हैं towards the end of the show. And end of the show में it gets totally exciting क्योंकि हमारे यहाँ पर लिखने लग जाते हैं. हाँ जी, जाइए, सजना नहीं आया अभी तक. You know who you are. साथ ही में आप लिखने लगते हैं कि नहीं, इस बार तो गाना दूसरा होना ही चाहिए. मतलब एक गाना नंबर वन पर पहुंच पहुंच के बहुत टाइम हुआ. भाई ये भी बात मैं मानती हूँ, लेकिन करें तो क्या करें. बॉलीवुड में अगर कोई नया गाना आ ही नहीं रहा तो मैं बॉलीवुड टॉप चार्ट्स में गाना कहाँ से लाऊं नंबर वन पर. बट एनीवे, वो तो रही मेरी प्रॉब्लम. आपकी प्रॉब्लम ये है कि भाई आपको पता ही नहीं है कि वेदांग रैना जो है वो कितना प्रैक्टिकल है. अब आप बोलेंगे ये कौन है. वेल यू नो वॉट गाइज, आई हैव डिसाइडेड मैं हर चीज पे अपडेट नहीं करने वाली हूँ. आपको पता है आई एम टॉकिंग अबाउट द ग्रैंड चाइल्ड ऑफ सुपरस्टार अमिताभ बच्चन. जी हाँ, आप किसी ने जब डेब्यू किया हो विद अ फिल्म मेकर लाइक जोया अख्तर, बड़ी हैरानी होती है कि भाई वेदांग रैना है ना, ही डिड नॉट एक्सपेक्ट टू डू मोर फिल्म्स आफ्टर द आर्चीज. उसने कहा भैया अब मैं पढ़ाई कर लेता हूँ, बिकॉज इतनी घटिया फिल्म बनी थी वो. लेकिन किस्मत के पास तो दूसरे प्लान्स थे, तो और भी बड़ा डेब्यू. जी हाँ, और भी बड़ा दैन हिज डेब्यू, जिगरा, जहाँ पर ही शेयर्ड द स्क्रीन स्पेस विद आलिया भट्ट. अब उसके बाद इनको लगा यार अब मैं क्या कर सकता हूँ, तो फिर उसके बाद मैं वापस आऊंगा. पीरियड ड्रामा डायरेक्टेड बाय इम्तियाज अली एंड को-स्टारिंग नसीरुद्दीन शाह, दिलजीत दोसांझ एंड शर्वरी. तो फिर सब कहते हैं देखिए नेपोटिज्म डज नॉट एग्जिस्ट इन बॉलीवुड, लाइक रियली. तो भाई बात हुई कि आपको किस तरह से इम्तियाज अली ने आपको अप्रोच किया. तो इट वाज जनरल मीटिंग, कॉमन अकरेंस है इंडस्ट्री में. आप मिलते हैं प्रोड्यूसर डायरेक्टर्स से और उसके बाद वो मतलब आपको ध्यान में रखते हैं. बट ही सर इम्तियाज सर की मीटिंग वाज वन ऑफ दोज जहां पर बहुत ही बढ़िया कॉन्वर्सेशन हुई, एक घंटे से भी ज़्यादा. और फिर दीज मीटिंग्स नॉर्मली लास्ट 10 मिनट, लेकिन वहाँ मज़ा आ गया. कश्मीर, म्यूजिक, कल्चर, बड़ी सारी बातों के बारे में बात करी. एंड द नेक्स्ट आई रियलाइज कि भैया ये फिल्म मेरी जेब में आ चुकी है. नॉट बैड, नॉट बैड. तो चलिए एक बढ़िया सा ऐसा गाना सुनते हैं जो कि आपको याद दिलाएगा एक प्यार भरी शाम की. और उसके बाद आपसे इंट्रोड्यूस करेंगे हम चार गाने. जी हाँ, सो कहीं मत जाइएगा. 4-3-2-1 कमिंग अप.
0: बॉलीवुड फ्लैशबैक.

0: कोई और बात नहीं होगी, कोई और बात होगी ही नहीं यहाँ पर, क्यों की चल रहा है।
1: From rocking the charts to ruling the weekly countdown, join us on Masti Top 20.
0: सिर्फ चार गानों की बात होगी। जी हाँ,
2: इनकार के बहाने कई बार
0: करते। ये गाना था पिछले हफ्ते नंबर टू पर। जी हाँ, सीधा न्यू एंट्री। इस बार क्या लगता है कहाँ जाएगा? अब रह गए हमारे चार गाने। It's from पति पत्नी और वो दो, followed by again a beautiful romantic track guys introduced this week and it's called सोचा ना था।
3: मेरी दुनिया बन जाएगा।
0: पता नहीं लड़की को कोई जाएगा कैसे बोल सकता है। मतलब ठीक है वो जैसी भी लगती है, लेकिन तुम उसको ये तो नहीं कह सकते ना कि सोचा ना तो तू ऐसे बन जाएगा।
3: वो सारिया वे सर गया रामा वे खेड़े पासे जाइए।
0: लिटरली वॉट रणवीर सिंह इज सेइंग नाउडेज, केड़े पासे जाइए सजना। जब से बॉयकॉट की बातें शुरू हुई हैं, दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द फोर गानास। And of course, the one and only. Dhurandhar ka ye wala gaana, jo number ek chhodne ki matlab naam hi nahi le raha hai. Radio Masti 24/7. I give you one last chance, guys, before I play the gaana number 4 and 3 to tell me which one is going to be gaana number 1 today. Let me know 9151896 3.
4: Trending song number 4.

0: और फाइनली वो दिन आ ही गया। ओहो, वो दिन आ ही गया, खुशियों वाला दिन आ ही गया, मतलब टाइम आ ही गया। रेडियो मस्ती 24/7 पर, जी हाँ, आप सुन रहे हैं शाम 5 बजे से।
1: दे आर फ्रेश, दे आर हॉट, दे आर स्पाइसी एंड दे आर हैपनिंग। जॉइन अस ऑन मस्ती टॉप 20।
0: आई एम एब्सोल्युटली इन लव विद केड़े पासे जाइए सजना। फॉर सम रीजन मैं तो मतलब आई जस्ट कैन नॉट गेट ओवर इट। बहुत ही प्यारा गाना, और जितने लोग लड़ रहे थे मेरे साथ यहाँ पर हमारे स्टूडियो में, नहीं नहीं इस गाने को टॉप चार्ट से ही निकाल दो, उनको भी समझ में आ गई कि जब हमारे सुनने वाले इस गाने को रिक्वेस्ट करते हैं उन्हीं के शो में, तो इस गाने की क्या अहमियत है। आई एम इन लव विद इट स्टिल। व्हाट एन अमेजिंग ट्रैक, मतलब उफ, इट टचेस द इमोशंस ऑफ द डीपेस्ट हार्ट, मतलब डीपेस्ट जहां पर होता है। बट एनीवे, ये तो मेरी प्रॉब्लम है। ऑन रेडियो मसी 24/7 गाइस, रह गए हैं 2 गाने। जी हाँ, 2 गाने, बताइए इनमें से पहले नंबर पे कौन सा है। गहरा हुआ, 1, 2, 3, 4, 5। ओ माय गॉड, द नंबर ऑफ मैसेजेस दैट हैव कम इन स्ट्रेट अवे। तेरा हुआ, एंड ऑफ कोर्स रोमांस इररिस्पेक्टिव विंस द चार्ट्स टुडे।
2: मेरी दुनिया बन जाएगा।
0: कुछ भी हो, प्यार तो प्यार ही होता है ना। रेडियो मसी 24/7 पर, जैसा कि मैं हमेशा कहती हूँ, मैं यहाँ से भाग रही हूँ एंड आई कैन सी एटलीस्ट अभी भी मैसेजेस आते चले जा रहे हैं। मतलब आई हैव ऑलरेडी काउंटेड 19, 20, ओके, टू मेनी मैसेजेस कमिंग हियर टेलिंग मी विच इज गोइंग टू बी गाना नंबर 1। आप में से कुछ सही है और कुछ नहीं है सही, बट वेल, यू विल फाइंड दैट आउट इन जस्ट अबाउट 3 seconds from now. Have a fantastic weekend, guys. This is Renuka signing off from Radio Masti 24/7. Remember to smile, because smile is the second best thing you can do with your lips. Bye. Take care. Enjoy the 2 tracks.
3: Trending song number 2.

0: रेडियो मस्ती 24/7 लाइव पर मैं हूँ अंतरा आपके साथ।
1: मैं आरजे पर मस्ती मॉर्निंग शो पर आपके साथ।
2: लीजिए समर आ गया है लेकर यादों का कारवां।
3: आपने इनकी आवाज तो सुनी है, अब क्या आप अपनी आवाज अपने ही शो के जरिए हमारे लाखों लिसनर्स तक पहुँचाना चाहेंगे? स्टेज फियर को भगाना हो या पैशन को आगे बढ़ाना हो, इट्स इम्पोर्टेंट टू स्टार्ट विद द राइट ट्रेनिंग। The RJ Academy at Masti Media Network is now open for you. That too with a hybrid model for your convenience. 12 hours training per level, flexible individual focused syllabus offered for 14 years old and above. Selected trained voices to get an opportunity to host live on Radio Masti 24/7. Email a brief intro to info@radiomasti.com.sg requesting for an application form.
4: Good morning.
5: Tuned into Radio Masti 24/7 Live, keeping you connected anywhere, anytime, the Desi way.
6: Trending song.
7: Check it out. Number one.

0: इस वीकेंड वाज अ गाय,
1: वो आ गया, देखो वो आ गया।
0: इस वीकेंड वाज अ गर्ल, इस वीकेंड वाज अ फिल्मी डायलॉग,
2: स्वागत नहीं करोगे आप हमारा।
0: एंड इफ वीकेंड वाज एन ऐप,
3: रेडियो मस्ती 24/7 लाइव,
4: रेडियो मस्ती 24/7 लाइव,
5: रेडियो मस्ती 24/7 लाइव,
6: रेडियो मस्ती 24/7 लाइव।
0: How to make best of weekends that travel faster than light. Tune into a Musty Weekends on Radio Musty 24/7 Live, the perfect recipe for you to unwind, keeping body entertainment close to you, anywhere, anytime.

0: 10 का 20 10 का 20 10 का 20 10 का 20।
1: अरे अरे अब बस 10 से दिल कहाँ भरेगा।
2: मस्ती टॉप 20 लेकर रेणुका जो आने वाली है। टाइम टू रेज द बार। मस्ती टॉप 20 बॉलीवुड चार्ट बस्टर्स ऑफ द वीक फुल ऑन रेणुका स्टाइल। Friday evenings, 5 p.m. onwards, catch the OG rock star Renuka with the week's top chart busters. Musty Top 20, only on Radio Musty 24/7, the only live Bollywood radio across Southeast Asia since 2009. The perfect recipe for you to unwind. Musty Weekends, only on Radio Musty 24/7 Live.

0: बनाना चाहिए? आप बोलो, हम बनाएंगे। चाहे ब्रेकअप हो या क्रश का सीन,
1: ऑल इज वेल।
0: आपकी प्लेलिस्ट, आपकी मस्ती। व्हाट्सएप करिए हमारे ऐप के थ्रू या फिर डायरेक्ट सिंगापुर नंबर 9151896 3 पर। मस्ती बॉइस, आपकी चॉइस।
2: ओनली ऑन रेडियो मस्ती 24/7 लाइव, अ पार्ट ऑफ मस्ती मीडिया नेटवर्क सिंगापुर। चेक इट आउट।
3: वीकेंड का मजा विद द बेस्ट ऑफ बॉलीवुड प्लेइंग ओनली ऑन रेडियो मस्ती 24/7 लाइव।

0: इस वीकेंड वाज अ गाय,
1: वो आ गया, देखो वो आ गया।
0: इस वीकेंड वाज अ गर्ल, इस वीकेंड वाज अ फिल्मी डायलॉग,
2: स्वागत नहीं करोगे आप हमारा।
0: एंड इफ वीकेंड वाज एन ऐप,
3: रेडियो मस्ती 24/7 लाइव,
4: रेडियो मस्ती 24/7 लाइव,
5: रेडियो मस्ती 24/7 लाइव,
6: रेडियो मस्ती 24/7 लाइव।
0: How to make best of weekends that travel faster than light. Tune into our Musty Weekends on Radio Musty 24/7 Live, the perfect recipe for you to unwind, keeping body entertainment close to you, anywhere, anytime. Just

0: This is Radio Masti 24/7 Live, the only local connect with global expat Indians. Anytime, anywhere.
1: राधा कृष्ण, हमारे भारत में हर प्रेमी को श्री कृष्ण और प्रेमिका को राधा जी के रूप में देखा जाता है।

से भी कह दो कि अपनी आग बुझा के करे, अगर उससे बातें करनी है तो फिर नजर झुका के करे, तो फिर नजर झुका के करे।

गालिब जिंदा होते तो तेरे लिए लिखते, गालिब जिंदा होते हैं तो तेरे लिए लिखते।

0: ये रात तो अपनी है पर एक ख्याल किसका है। ये रात हमें इतना प्यार क्यों करती है।
1: मुझे चांद पे ले चलो।
0: सबको सुलाकर हमसे अकेले में बात करती है। बन के रात के हम सफर हर रोज 11 बजे ट्यून इन टू
1: रात अकेली है। जोश में रहो।
2: वीकेंड का मजा विद द बेस्ट ऑफ बॉलीवुड प्लेइंग ओनली ऑन रेडियो मस्ती 24/7 लाइव।

0: इफ वीकेंड वाज अ गाय,
1: वो आ गया, देखो वो आ गया।
0: इफ वीकेंड वाज अ गर्ल, इफ वीकेंड वाज अ फिल्मी डायलॉग,
2: स्वागत नहीं करोगे आप हमारा।
0: एंड इफ वीकेंड वाज एन ऐप,
3: रेडियो मस्ती 24/7 लाइव,
4: रेडियो मस्ती 24/7 लाइव,
5: रेडियो मस्ती 24/7 लाइव,
6: रेडियो मस्ती 24/7 लाइव।
0: How to make best of weekends that travel faster than light. Tune into our Musty Weekends on Radio Musty 24/7 Live, the perfect recipe for you to unwind, keeping body entertainment close to you, anywhere, anytime.

0: ना पुरुष ही नहीं, महापुरुष है, महापुरुष।
1: वेंसडे को मूड डाउन हो गया, कोई बात नहीं, हमारे पास उसका भी जुगाड़ है। मिडवीक ब्लूज, जहां काम की चिंता छोड़ो और हमारे साथ मस्त हो जाओ। फिल्मी बातें, मस्ती मोमेंट्स, थोड़ा छेड़ना और पंगे लेना भी, क्योंकि लाइफ सिर्फ काम के लिए नहीं है मेरे दोस्त। ट्यून इन एंड पावर थ्रू द वीक विद मिडवीक ब्लूज ऑन रेडियो मस्ती 24/7। आओ मूड चेंज करें।
2: The best of Bollywood playing on Radio Masti 24/7 live. Have a masti bhara weekend.

0: नाचने का मन है।
1: मेरा भी। आपके रिक्वेस्ट ही बनाएंगे शो को फुल ऑन पार्टी। व्हाट्सएप करिए हमारे ऐप के थ्रू या फिर डायरेक्ट सिंगापुर नंबर 9151896 पर। मस्ती वॉइस आपकी चॉइस।
2: Only on Radio Musti 24/7 Live, a part of Musti Media Network Singapore. Check it out.
3: रात अकेली है
4: तो क्या हम तो आपके

0: रात अकेली है तो क्या, हम तो आपके साथ हैं। जोश में रहो।
1: Your passport to the world every Monday morning, from global headlines to a pinch of Bollywood spice.
0: The morning show with Renuka, 7 AM Mondays.
2: Only on Radio Musti 24/7 Live, a part of Musti Media Network Singapore.
3: Check it out. Josh Mehra.
0: रात अकेली है तो क्या, हम तो आपके

जहाँ चार यार मिल जाए वहीं रात हो गुलजार, जहाँ चार यार मिल जाए वहीं रात हो गुलजार, जहाँ चार यार महफिल रंगीन जमे, महफिल रंगीन जमे दौर चले धूम मचे, मस्त मस्त नजर देखे नए चमत्कार, जहाँ चार यार, जहाँ

को कोई बचा ले। चूहा आगे पीछे बिल्ली पीछे बिल्ली चूहा आगे पीछे बिल्ली पीछे बिल्ली चूहा आगे पीछे बिल्ली पीछे बिल्ली चूहा आगे आ

शौहर अकड़े, रोज के झगड़े, रोज के लफड़े, लफड़े झगड़े, अरे झगड़े।

0: चेपी पेचे लाया आ की
1: उस दिन बीवी बन गई भोली, कुंडी खोली हंस के बोली, जाने तमन्ना अंदर आओ, पहले तो कुछ खाओ आओ, फिर बिस्तर पे होंगी बातें, बड़े प्यार से कटेंगी रातें। शौहर चौंका, भूले से मैं, ये किसके घर आ गया यार, मेरी बीवी मुझे कभी भी देने

बोला देवी माफ कीजिए, मेरे साथ जरा इंसाफ कीजिए, मुझको अपने घर जाना है, वरना बीवी फिर मारेगी।

भजी ती लुड़ी खुशी पे लौट के आई आई रे आई रे आई रे आई रे आई पीना छूट गया पीना छूट गया बीवी ने इतना दिया प्यार पीना छूट गया फिर दोनों ऐसे मिले फिर दोनों ऐसे मिले प्यार में ही डूब गए प्यार अगर मिले तो हर नशा है बेकार जहां चारिया

0: जादू है नशा है
1: और गानों से मदहोश करने के लिए हम है ना
2: रात।

मौला के हाथ, जिसकी चुंदरी रंग दी धन धन उसके भाग।

अनग बधावरा मोरे घर है आज रंग हे माँ।

निजामुद्दीन आलिया, निजामुद्दीन आलिया, निजामुद्दीन आलिया, जग उजियारो, जगत उजियारो, जग उजियारो, हाँ जग उजियारो, साईं जग उजियारो, जगत उजियारो, जहाँ देखूं मोरे संग

दान धन भाग उनके मुरे सजनी, धन धन भाग दान धन भाग उनके मुरे सजनी, जिन ऐसो सुंदर प्रीतम पायो खेल और चिश्तियों हो।

pure voice. I am singing sound. Soup sound.

0: नए दिन की शुरुआत शांति और श्रद्धा के साथ। भक्ति, प्रेरणा और सुकून भरे गीत सुनिए रेडियो मस्ती 24/7 पर। मस्ती पे भक्ति सुबह 6 बजे।
1: तुम्हारा अधिकार सिर्फ कर्म करने पर है, उसके फल पर नहीं। फोकस ऑन डूइंग योर ड्यूटी विदाउट बीइंग अटैच्ड टू द रिजल्ट्स।

हर सुबह एक नई शुरुआत है, मन में शांति हो तो दिन अपने आप सुंदर बन जाता है। आप सुन रहे हैं मस्ती पे भक्ति, रेडियो मस्ती 24/7 पर।

रोशनी के साथ अपने मन को भक्ति और प्रेरणा से रोशन कीजिए। आप सुन रहे हैं मस्ती पे भक्ति रेडियो मस्ती 24/7 लाइव पर।

0: serious headlines with a not so serious vibe. Only on The Morning Show on Radio Masti 24/7.
1: गुड मॉर्निंग तीसरी बार गुड मॉर्निंग। यहाँ पर हमारे सिस्टम्स को आज पता नहीं क्या हो गया है, मैं जब माइक ऑन करके कुछ कहने लगती हूँ तो वो कहता है नहीं जी आज जो छुट्टी है आज आपको कुछ कहना अलाउड नहीं है। रेडियो मस्ती 24/7 पर वंस अगेन ट्राइंग माय लक एंड सेइंग गुड मॉर्निंग सपना जी एंड गुड मॉर्निंग एवरीबडी। जी हाँ बिल्कुल, मैं मौजूद हूँ यहाँ पर, अपने आप गाने नहीं चल रहे हैं और मैं यहाँ पर कब से बताने की कोशिश कर रही हूँ कि भाई वैसाख डे की छुट्टी आप बना रहे हैं। हाँ, मैं नहीं, लेकिन हमेशा की तरह शुरुआत करेंगे मॉर्निंग शो की विद द वन एंड ओनली थिंग दैट आई ऑलवेज लव टू डू, व्हिच इज डू नॉट ड्वेल इन द पास्ट, डू नॉट ड्रीम ऑफ द फ्यूचर, कॉन्सेंट्रेट द माइंड ऑन द प्रेजेंट मोमेंट। जी हाँ, आज का ये हफ्ते का लाइफ कोट जो मैंने ही बुद्धा कह के गए हैं, क्या बात है ना। तो पिछली बातें याद करो ना, आने वाले फ्यूचर की टेंशन करो, सिर्फ और सिर्फ इसी टाइम अपना माइंड अपने करंट टाइम पर रखो। और समय बदलता है, सबका बदलता है, राइट? जिस तरह से आप मैनिफेस्ट करेंगे आगे वही जिंदगी बनेगी। रेडियो मस्ती 24/7 पर चल रहा है द मॉर्निंग शो, रहूंगी मैं आपके साथ 10 बजे तक। मेक श्योर यू स्टे ट्यून्ड विद मी। गुड मॉर्निंग।

0: मंडे कॉफी का बेस्ट पार्टनर द मॉर्निंग शो ऑन रेडियो मस्ती 24/7 न्यूज व्यूज एंड अ पिंच मस्ती।
1: वेलकम बैक। किसी के लहू मुंह लग गया हो या किसी का चाय का कप मुंह लग गया हो, वेल यू ऑल आर ट्यून्ड इन राइट नाउ टू रेडियो मस्ती 24/7 एंड ऑफ कोर्स दिस इज द मॉर्निंग शो। वेल शुरुआत करते हैं जकार्ता से। जी हाँ, वन ऑफ द सिटीज दैट आई लव टू विजिट एंड आई लव टू गो शॉपिंग। लेकिन हाल ही में क्या हो रहा है वहां पर, दैट देयर हैव बीन स्ट्रीट क्राइम्स गाइस। जकार्ता के वायरल वीडियोज अगर आप देखेंगे तो ब्रेजन रॉबरीज जो कि टूरिस्ट को टारगेट कर रहा है, दे हैव एक्चुअली प्रॉम्प्टेड कंपैरिजंस बिटवीन द इंडोनेशियन कैपिटल एंड गोथम सिटी। जी हाँ, जो है क्राइम रिडन फिक्शनल सिटी बैटमैन की कॉमिक्स में। वेल, अलग अलग वीडियो सर्कुलेट कर रहे हैं ऑनलाइन जिसमें दिखा रहे हैं कि बाइक्स पर थीव्स आते हैं, जी हाँ चोर आते हैं, एंड दे एक्चुअली हैव समथिंग लाइक यू नो फेक फायर आर्म्स, और उसके बाद वो इस तरह से बिहेव करते हैं जैसे कि हमारे पास हमें अपना सब कुछ दे दो, एंड यू नो पीपल गेट स्केयर्ड एंड दैट्स व्हाट हैपेंस। सो सिटीज गवर्नर हैज कॉल्ड दीज आइसोलेटेड इंसिडेंट्स एंड ऑन मे 9th, जी हाँ, उन्होंने साइट किए सर्विस, वहां पर शुरू करे सर्विस, एंड उसके बाद पता लगा कि आसियान की सेकेंड सेफेस्ट सिटी है आफ्टर सिंगापुर। अब भाई, एक तरफ इस तरह के वीडियोस, दूसरी तरफ ऐसी ऐसे क्या क्या रिपोर्टिंग हो रही है, क्या माने क्या नहीं। वेल, हमारी तरफ अगर आप देखें और माने तो हम ये कहेंगे कि रुपया जो है काफी वीक हो चुका है, एंड देयरफॉर इट इज इम्पॉर्टेंट कि आप ध्यान दें, जाए जकार्ता, लेकिन डेफिनेटली बहुत बहुत ध्यान के साथ। रेडियो मस्ती 24/7 पर कमिंग अप अगला ब्यूटीफुल सा गाना जो कह रहा है कि जैसे जैसे लोग मुझे मिल रहे हैं तो मिलिया सो हैप्पी कि आप लोग पब्लिक हॉलिडे पर भी मेरे साथ आके जुड़ रहे हैं। लव यू गाइज, गुड मॉर्निंग।

0: एंड वेलकम वंस अगेन रेडियो मसी 24/7 पर. जी हाँ बिल्कुल, आप हैं रेणुका के साथ में और चल रहा है हमारा और आपका खास द मॉर्निंग शो.
1: सुबह का असली वेक अप कॉल द मॉर्निंग शो विद रेडियो मसी 24/7.
0: मॉर्निंग शो पर इस समय मैं आपको ले जाना चाहती हूँ सिंगापुर के उस लॉन्च पर, जी हाँ, जहाँ पर शंग्रीला डायलॉग हुआ और वहां पर कुछ कुछ खास डिसीजंस लिए गए. 17 कंट्रीज इंक्लूडिंग सिंगापुर ने लॉन्च किया इसी वीकेंड पर द शंग्रीला डायलॉग, अ फ्रेमवर्क टू प्रोटेक्ट क्रिटिकल अंडर वाटर इंफ्रास्ट्रक्चर. भाई जमीन के ऊपर का तो हम बहुत ध्यान रखते हैं, लेकिन जहां पर जमीन के नीचे के इंफ्रास्ट्रक्चर का लेना देना है, वेल वी नो दैट वी आर नॉट दैट पर्टिकुलर. राइट, कंट्रीज जो कि यूरोप, मिडिल ईस्ट, ओशनिया और साउथ ईस्ट एशिया से आए, उन्होंने लॉन्च किए गाइडिंग प्रिंसिपल्स फॉर अंडर वाटर इंफ्रास्ट्रक्चर डिफेंस एक्सचेंज, जिसका शॉर्ट फॉर्म गाइड, दैट एम्स टू ब्रिंग टुगेदर नेशंस विद कॉमन इंटरेस्ट इन द सिक्योरिटी ऑफ क्रिटिकल अंडर वाटर इंफ्रास्ट्रक्चर, जैसे कि सब सी टेलीकम्युनिकेशन केबल्स. सोच के देखिए, अगर उन केबल्स को कुछ हुआ तो आगे क्या हो सकता है. कंट्रीज नीड टू वर्क टुगेदर साथ ही में एस्टैब्लिश करने के लिए इंटरनेशनल नॉर्म्स टू बिल्ड, मेंटेन एंड प्रोटेक्ट क्रिटिकल अंडर वाटर इंफ्रास्ट्रक्चर. और साथ ही साथ में कोई भी अगर उसको हार्म करे तो वेल उसके अगेंस्ट भी पेनल्टीज स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए, ऐसा कहा सिंगापुर के डिफेंस मिनिस्टर चान चुन सिंह ने. वेल ही वाज लॉन्चिंग द साइडलाइंस ऑफ द शंग्रीला डायलॉग एशिया टॉप डिफेंस समिट जो हाल ही में सिंगापुर में हुआ. बढ़ते हैं आगे, यहाँ पर थोड़ा सा टेम्पो बढ़ाते हैं. रेडियो मस्ती 24/7 पर चल रहा है द मॉर्निंग शो. स्टे ट्यून्ड गाइस, देयर्स मोर न्यूज कमिंग अप एंड ऑफ कोर्स बॉलीवुड की खबरें दिस का आवर आई हैव येट नॉट टोल्ड यू. तो चलिए देखते हैं क्या सुनाते हैं हम आपको आगे बढ़कर. फिलहाल के लिए बम डिगी डिगी बम हो जाए.
2: रेडियो मस्ती 24/7. डाउनलोड रेडियो मस्ती 24/7 ऐप टू कॉल अस इंस्टेंटली और ईमेल, व्हाट्सएप, टेक्स्ट अस.

0: आदाब, सत श्री अकाल, गेम जय सिंगापुर, सारू जय।
1: नो नो टॉकिंग अलाउड, सिर्फ म्यूजिक बोलेगा। बैक टू बैक गाने ओनली ऑन मस्ती म्यूजिक कैफे,
2: वेयर यू मस्ती 24/7 लाइव, अ पार्ट ऑफ मस्ती मीडिया नेटवर्क सिंगापुर। चेक इट आउट।

0: ओए ओए रेडियो मस्ती 24/7 पर बुला रही हूँ मैं आपको। और ये वाला गाना तो आप सभी जानते हैं कि किसके लिए चलता है। वेल, क्या है ना कि छुट्टी वाले दिन जब बॉस काम करता है तो वो अपने खास लोगों के लिए वो वाला गाना चलाता है, क्योंकि वो जिम में वर्कआउट कर रहे होते हैं और यहाँ बॉस खा पी के और ज्यादा फैल रहा होता है। गुड मॉर्निंग एवरीवन।
1: सुबह का असली वेक अप कॉल, द मॉर्निंग शो विद रेडियो मस्ती 24/7।
0: बिल्कुल सही पहचाना है हमारा और आपका ये खास शो जिसका नाम है द मॉर्निंग शो। वेल, द वैभव सूर्यवंशी की बात किए बिना आजकल तो कोई शो खत्म ही नहीं होता। बट दिस इज इन अ वेरी डिफरेंट लाइट गाइस। 15 साल का ये टीन सेंसेशन मतलब आईपीएल में आग लगा दी आग। 776 रन्स 16 मैचेस विद एवरी नॉक ही प्लेड आईपीएल 2026। जो उसके अराउंड का क्लैमर है, द पोटेंशियल डेब्यू ऑफ दिस इंडियन क्रिकेट टीम मेंबर ग्रू लाउडर एंड लाउडर। वेल अमेजिंग। बड़ा ही सैड लगा मुझे कि कल जब हम मैच देख रहे थे फाइनल्स, उसमें मैंने इसको नहीं देखा खेलते हुए। बट वेल ही प्लेड अमेजिंग। लेकिन अभी मैच की बात नहीं कर रही हूँ, अभी बात कर रही हूँ मैं व्हाट शेखर कपूर है सर। जी हाँ, फिल्म मेकर शेखर कपूर ने ये कहा है कि ये जो टैलेंटेड क्रिकेटर है हमारा सूर्यवंशी, कहते हैं कि अगर वो इतना सेंसेशनल क्रिकेटर नहीं होता ना तो फिर मैं उसको मासूम में कास्ट कर लेता। अरे भाई, क्यों उसका करियर बर्बाद करने में लगे हो? मासूम में जिसको कास्ट किया था वो कौन सा पहुंच के मतलब 30 मार खां बन गया। बट एनीवे, वैभव ही मेड हिज डेब्यू जैसा कि हम जानते हैं 2025 अप्रैल में 14 इयर्स ऑफ एज में 23 डेज ओल्ड। और उसने रिकॉर्ड तोड़ दिया यंगेस्ट डेब्यूटेंट इन आईपीएल हिस्ट्री का। मतलब मुझे तो लगता है कि यार ये चाइल्ड लेबर का एक रूप है या नहीं है। बट ऑल सेड एंड डन, आई लव वैभव सूर्यवंशी एंड हिज टशंस ऑन रेडियो मस्ती। आई विल सी यू नेक्स्ट आवर गाइस। फिलहाल के लिए चलिए धीरे धीरे, जैसे मैंने कहा टेम्पो बढ़ाते हैं तो बढ़ाते हैं विद झूम शराबी। एंजॉय इट।

0: your passport to the world every Monday morning. From global headlines to a pinch of Bollywood spice. The Morning Show with Renuka, 7 a.m. Mondays.
1: Only on Radio Musti 24/7 Live, a part of Musti Media Network Singapore.
2: Check it out.
3: And on Radio Musti 24/7, स्वागत है आपका. 8:00 इस समय 1 मिनट हुआ है सिंगापुर के स्टूडियो से. जी हाँ, रेणुका आपके साथ. जैसे कि मैंने सुबह कहा, बारिश हो, तूफान हो, छुट्टी हो, जो भी हो, यू विल हियर माई वॉइस ऑन द मॉर्निंग शो, अनलेस आई एम नॉट इन सिंगापुर. ओके, थोड़ा सा डिस्क्लेमर तो अलाउड है. वेल, इस घंटे में आपको बताना चाहती हूँ उस वॉर के बारे में. जी हाँ, जो कि मिडल ईस्ट में काफी स्ट्रेस, काफी क्राइसिस, लेकिन उसके बारे में हमने पूरे हफ्ते बात नहीं करी. जी हाँ, well, बात कुछ ऐसी हो रही है कि US प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने टफर पीस प्रपोजल भेजा है वापस टू ईरान एंड अंडरलाइन द रिफ्ट दैट द पार्टी स्टिल नीड टू क्लोज. जी हाँ, उन्होंने कहा कि भाई बड़े दिन हो गए, बात नहीं हुई हमारी, तुमने बातें मान ली, सोच लिया कि नहीं सोचा. तो ईरान के जो चीफ नेगोशिएटर हैं, उन्होंने कल ही के दिन में वॉर्न किया है दैट द यूनाइटेड स्टेट्स वाज नॉट टू बी ट्रस्टेड. ये कहते हुए उन्होंने कहा कि वो बिल्कुल अग्री नहीं करेंगे टू एनी डील विद वॉशिंगटन अनलेस इट फुली सिक्योर्ड ईरानियन राइट्स. मोहम्मद बागर गालिबाफ के जो ये रिमार्क्स हैं, दैट केम एज रिपोर्ट्स इमर्ज दैट US प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप, उन्होंने टफर पीस प्रपोजल वापस भेजा था टू ईरान and underline the rift that the parties still need to close. Aur baki jo jo tweaks reh gaye hain draft mein, that could further delay the agreement to formally end the Middle East war aur saath hi saath mein to reopen the Strait of Hormuz. Bahut sare hafte ho chuke hain of fraught negotiation aur is samay sharp rhetoric and occasional flare-ups of violence dekhne aur sunne mein aa rahe hain. Iran was already in talks with the United States about the fate of its nuclear program February mein, when the US and Israel launched air and missile strikes that wiped out much of the Islamic Republic senior leadership. Well, well, well.